0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निमू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रूपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रूपये होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति किसानों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल संघों, राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अभी भी निलंबित है, वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी हैं। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथी T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन ही बना सका। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे।

प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मंत्रिमंडल ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। सरकार ने गन्ना किसानों के मुद्दों की जांच और उचित उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश की संभावना। और वेस्टइंडीज ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य

0: क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वे इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस पीएलबी को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
2: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी।

0: जी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1370 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरूआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
2: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
3: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
2: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
4: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
2: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
5: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि

0: हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख तक सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है। फिलहाल दोनों जहाजों के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है और कोलंबिया ने कल यरूशलेम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प्रियेला ने इसराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
2: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पांच देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत करिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिल्ली से पहले रेलवे कर्मचारियों को तोहफा देने का समाचार कई अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, रेलवे कर्मियों को 78 दिन का बोनस, दिव्यांगों को जन्म से मिलेगी पेंशन। अमेरिका में वर्क परमिट खत्म तो 540 दिन का एक्सटेंशन नहीं, नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों की सुर्खी है। छठ पर बिहार जाने वालों की राह आसान करेगी 3 विशेष ट्रेनें, अमर उजाला की खबर है। दैनिक भास्कर ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्रे की तस्वीर दी है।
2: धन्यवाद वैष्णवी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to launch 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today. Union Cabinet approves productivity linked bonus of 78 days for over 11 lakh railway employees. Government forms committee to examine issues raised by sugarcane farmers and recommend appropriate measures. IMD forecasts heavy rain in Haryana, Punjab, Delhi, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry today. And in men's cricket, West Indies beat India by 24 runs in the 4th T20 match to level series 2-2. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate and dedicate to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक मुंबई। 8:40 और आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर यानी एफएम रेनबो और थर्सडे की ब्राइट मॉर्निंग 15 अक्टूबर 2026 और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, मेरे बच्चे मेरे बाबू मेरी सोना तू क्या चाहता है, आखिर तेरे दिल में क्या है, जो तुझे चाहिए वही मिलेगा। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ इसी स्पिरिट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, यानी जिंदगी में हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें खुशहाल रहें। सो पहला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत और गीत सुनकर आपको कुछ जज करने की कोशिश भी करनी है कि ये गीत मैंने आज सुबह सुबह क्यों प्ले किया है। आप जानते हैं कि मेरा अंदाज क्या है, मेरा स्टाइल क्या है। तो चलिए लता जी की आवाज़ और आपके दिल को थोड़ा सा बेकरार कर देते हैं।

0: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम।
1: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
0: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कॉम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
1: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
0: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
2: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों?
3: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ दोस्तों, एक बेवफा से प्यार किया, लता जी की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत गीत। और इस गीत को सुनकर, यानी जो दो तीन गाने मैंने आपको सुनवाए, हम एक गोल्डन एरा में चले जाते हैं, एक ऐसे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं जहाँ संगीत का एक अलग मैजिक था, एक अलग मुकाम था। तो गीत संगीत के दीवानों, एफएम के चाहने वालों, 8:55 हो चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज थर्सडे मॉर्निंग में हम बात करते हैं कि आज का सितारा कौन होगा, यानी मस्त मुंबई में आज का सितारा कौन होगा। और ये संगीत हमारी हिंदी फिल्मों की जान है, और आज एक महान संगीतकार की बर्थ एनिवर्सरी है। अगर आप उनका नाम जान गए हैं, आपको थोड़ा सा भी कुछ आइडिया हो गया, तो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें जल्दी से जल्दी बताएं कि इस संगीतकार का, यानी जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, जिनके गाने मैंने आपको सुनवाए हैं, उनका पूरा नाम क्या है। जी हाँ, आपको बताना है, मेरा सवाल गौर से सुनिएगा, उनका पूरा नाम क्या है। तो व्हाट्सएप के ज़रिए जल्दी से जल्दी मेरे सवाल का सही जवाब भेजें, और जिनके जवाब सही होंगे उन सभी लिसनर्स का नाम मैं ऑन एयर लूँगा। और आज इन्हीं की चर्चा करेंगे, और इन्हीं की फिल्मों के प्यारे प्यारे गाने मैं आपको सुनवाऊँगा। सुनते रहिए एफएम रेनबो।

0: आपकी पसंद की कोई भी कार लीजिए, कॉस्मोस कार लोन तो है ही। कार लोन 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% से, टेन्योर 7 साल तक, नियम व शर्तें लागू, 0 प्रोसेसिंग फी। सफर सुहाने साथ कॉस्मोस कार लोन के। आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
1: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
2: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
3: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

जी हाँ, मुंबई सिटी तो प्यार का सागर है, बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना है। और फिल्म में ये प्रार्थना भगवान के लिए यानी ऊपर वाले के लिए की गई है, उसे याद किया गया है, उससे शक्ति मांगी गई है, आशीर्वाद मांगा गया कि हम हमेशा आपसे जुड़े रहें, कनेक्ट रहें। तो मुंबई सिटी 9:08 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं FM रेनबो और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। और इतने सारे खूबसूरत गानों को सुनकर हमारे लिसनर्स को अंदाज़ा हो गया है कि आज किस हस्ती की बात मैं करने वाला हूँ। यानी 9:07 से पहले हमारे जिन लिसनर्स ने सही जवाब दिए हैं उनके नाम मैं ऑन एयर लेने वाला हूँ। तो आज की हस्ती है शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी। जी हाँ, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इन दोनों ने कितना शानदार काम किया है। 1949 में मशहूर फिल्म अभिनेता निर्देशक राज कपूर साहब ने बरसात फिल्म में इन्हें संगीत देने का मौका दिया था, ये उनकी पहली फिल्म थी। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शंकर पृथ्वी थिएटर में पहले से कई तरह के काम कर रहे थे, जैसे पृथ्वी थिएटर में नाटकों में छोटी छोटी भूमिकाएं करना। यहीं पर उन्होंने दोस्तों सितार पियानो जैसे वाद्य यंत्र बजाने सीखे। इस तरह यहीं से शंकर की, जी हाँ, शंकर सिंह रघुवंशी की संगीत की यात्रा शुरू हुई। आज शंकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और शंकर जयकिशन संगीतकार की जोड़ी थी जिन्होंने साथ में काम किया और बहुत ही कमाल के गाने बनाए, और उनके गाने उनका संगीत हमारे पास एक बेशकीमती खजाना है। तो शंकर सिंह रघुवंशी को हम इस कार्यक्रम में उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर कोटि कोटि नमन करते हैं और आज उन्हीं के गाने मैं आपको सुनवा रहा हूं। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत, लता जी की आवाज, बस रूठना मत। जी हाँ,

0: कोस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम।
1: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
0: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कॉम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
1: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
0: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
1: कोस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
2: अरे या E20 ला घेऊन काय कन्फ्युजन आहे?
3: मला तर फुल कॉन्फिडन्स आहे, तज्ञांनी टेस्ट केल्यावर कोणत्याही इंजिनची झीज आढळली नाही। E20 मुळे इंजिन लॉकिंग कमी होतं आणि हाय ऑक्टेन मुळे पिकअपही अमेझिंग मिळतो।
2: मग तर नो कन्फ्युजन, ओनली कॉन्फिडन्स।
3: भारत सरकारचा उपक्रम, तेल विपणन कंपन्यांद्वारे जनहितार्थ प्रसारित।
0: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
4: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
4: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम रेनबो कार्यक्रम मस्त मुंबई, और बात कर रहे हैं शंकर जयकिशन की और इस जोड़ी के शंकर सिंह रघुवंशी की आज बर्थ एनिवर्सरी है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम उन्हें उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर कोटि कोटि नमन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, बरसात फिल्म के गाने सुपरहिट हो गए और ये उनकी पहली फिल्म थी, यानी राज कपूर साहब के साथ उन्हें पहला मौका मिला, और राज कपूर जैसी हस्ती के साथ पहला मौका मिलना अपने आप में बहुत बहुत मायने रखता है। और इस फिल्म के संगीत से शंकर जयकिशन की जोड़ी एक बहुत बड़ी स्टार बन गई। 1951 में दूसरी फिल्म आई आवारा, उसके गाने भी मैंने आपको सुनवाए, और आवारा फिल्म के बाद एक टीम बन गई और इस टीम में थे राज कपूर, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र और मुकेश, साथ में लता जी, और इन लोगों ने गीत संगीत की दुनिया में इतना कमाल का काम किया, इतने खूबसूरत गाने बनाए कि आज कह सकते हैं कि लगभग 75-76 साल के बाद भी, यानी करीब 70-80 साल के बाद भी ये गाने लोगों के दिलों को छू रहे हैं, लुभा रहे हैं। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत, लता जी की आवाज़।

जी हाँ दोस्तों, 9:25 और 25 सेकंड और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और प्यारे प्यारे गाने और शंकर जयकिशन का कमाल का संगीत। और आज के हमारे सितारे हैं शंकर सिंह रघुवंशी। इनका पूरा नाम है शंकर सिंह राम सिंह रघुवंशी। तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1922 को हैदराबाद में। और बचपन से ही शंकर को दो चीजों का बहुत शौक था। हम सभी को बचपन में कुछ ना कुछ चीज़ें भाती हैं और कुछ ना कुछ शौक सभी के रहते हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि शंकर सिंह को किन चीज़ों का शौक था, यानी दो कंट्रास्ट, पूरा वेरिएशन लाइफ में। उनका पहला शौक था कुश्ती करना। जी हाँ, अखाड़े में जाना, कुश्ती करना, कुश्ती के दाव पेच सीखना। और दूसरा शौक था तबला बजाना। जी हाँ, देखिए कितना इसमें कंट्रास्ट है, कहाँ कुश्ती करना, कहाँ तबला बजाना। कुश्ती की वजह से उनकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी रही, उनकी कदकाठी काफ़ी अच्छी रही। और जहाँ तक तबले की बात है, तो वो अपने घर के पास एक शिव मंदिर था, वहाँ पर जब भी कीर्तन होता था, सत्संग होता था, तो वो तबला बजाया करते थे। और मुझे लगता है कि भगवान ने उनकी जो ये तबला बजाने की कला थी, उसको बहुत सीरियसली लिया और भगवान प्रसन्न हो गए और उन्हें मुंबई भेज दिया। और मुंबई आकर उन्हें पृथ्वीराज कपूर साहब का जो थिएटर था, यानी पृथ्वी थिएटर, वहाँ पर उन्हें तबला बजाने की नौकरी मिल गई। लेकिन मुंबई में भी उनका कुश्ती का शौक बरकरार रहा और समय निकाल कर वो यहाँ भी अखाड़े में उतरते थे और कुश्ती का अभ्यास करते रहते थे। और वो जो तबला बजाने की नौकरी कर रहे थे, इसके लिए

उन्हें मिलते थे हर महीने 75 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 75 रुपए। सोचिए 1950 के आसपास का समय था और 75 रुपए। आज 75 रुपए में एक आदमी खाना भी नहीं खा सकता है। समय कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एनीवे, शंकर साहब की यहाँ पर दोस्ती हुई, यानी मुंबई में घूमते घूमते उन्हें एक दिन जयकिशन टकरा गए और जयकिशन को भी काम की तलाश थी और जयकिशन को हारमोनियम बजाना आता था और पृथ्वी थिएटर में एक हारमोनियम बजाने वाले की जगह खाली थी और शंकर जयकिशन को पृथ्वी थिएटर ले आए और उन्हें हारमोनियम बजाने की नौकरी दिलवा दी। इस तरह शंकर और जयकिशन के बीच में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती समय के साथ बढ़ती रही और बाद में दोस्ती एक संगीतकार की जोड़ी बनकर दुनिया के सामने आई और ऐसी सामने आई कि आज भी वो हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं। इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हमारे दिलों में आज भी दोनों बसे हुए हैं। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, मन्ना डे साहब की आवाज़।

0: क्यूमुलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
1: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
0: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
2: जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं FM रेनबो यानी 107.1 MHz पर। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, लता जी की आवाज़।

जी हाँ, मुंबई सिटी 9:41 और 11 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और आज के सितारे हैं शंकर जयकिशन और आज हम शंकर सिंह रघुवंशी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, ऐसे लोग, ऐसे कलाकार यानी शंकर जैसे, जयकिशन जैसे हमेशा इस दुनिया में जिंदा रहते हैं, बरकरार रहते हैं अपने काम की वजह से। जो कुछ भी उन्होंने कमाया है वो हमेशा, मुझे लगता है कि जब तक संगीत रहेगा इस जोड़ी का नाम रहेगा। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शंकर जयकिशन ने एक संगीतकार के तौर पर 1949 से लेकर लगभग 1971 तक साथ में काम किया, लेकिन 1971 में सिर्फ। जी हाँ, मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को भगवान भी अपने पास बुलाना चाहते हैं। 1971 में सिर्फ 41 साल की उम्र में जयकिशन का निधन हो गया और शंकर सिंह अकेले रह गए। लेकिन इसके बाद भी शंकर सिंह अकेले ही फिल्मों में संगीत देते रहे और संगीतकार के तौर पर उन्होंने, जी हाँ, उन्होंने हमेशा नाम इस्तेमाल किया शंकर जयकिशन। यानी जयकिशन के दुनिया से जाने के बाद भी शंकर और जयकिशन की दोस्ती हमेशा हमेशा बरकरार रही। ऐसा होता है संगीत का जादू, ऐसा होता है गीतों का मतलब। और अप्रैल 1987 में 64 साल की उम्र में शंकर सिंह रघुवंशी भी इस दुनिया से चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए गीत संगीत का एक अनमोल खजाना।

आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए, इस दुनिया के लिए। तो चलिए, अगला गीत पेश करने से पहले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद सुनेंगे कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हर किसी को चाहिए अपने सपनों का घर और हर किसी को चाहिए किफायती ब्याज दर। कॉस्मोस होम लोन, ब्याज दर 7.80% से शुरू, 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध, टेन्योर 25 साल तक और 0 प्रोसेसिंग फी। नियम व शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
2: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
3: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
4: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है। वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

जी हाँ दोस्तों, भूले से भी ना करना कोई प्यार। बहुत ही खूबसूरत गीत, लता जी की आवाज़ और शंकर जयकिशन और लता जी का जो कम्बिनेशन है, जो उसका मैजिक है दोस्तों, वो लाजवाब है। तो चलिए चलते चलते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे किन लिसनर्स ने मैंने सवाल पूछा था कार्यक्रम की शुरुआत में कि आज हम किस हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं, किसकी चर्चा करेंगे। और मेरा सवाल था कि उस हस्ती का आपको पूरा नाम बताना है, सही नाम बताना है। तो जिन लिसनर्स ने सही नाम बताया उनके नाम मैं ऑन एयर ले रहा हूं। जी हां, ग्रांट रोड से फिरोज सिंगनपुरिया जी, हमेशा की तरह आप सही रहे। और आर्यन सोनी साहब जयपुर से, पंकज माहौड़ अमरावती से, दिगंबर काले कुरला ईस्ट से, और राकेश माथुर जी पुणे से हमेशा की तरह सही रहे। तनुजा शर्मा अंधेरी से, लाली झा अजमेर से, सुंदरी ठाकुर उज्जैन से, संयोगिता चौहान भी इंदौर से, और हेमंत भालेकर जी मालाबार हिल से, दिलेश वंजारी भंडारा से, दीपा पालकर जी माहिम से हमेशा की तरह सही रही, और चेतन कुमार गया बिहार से। हमारे इन लिसनर्स के जवाब एकदम सही थे। जी हाँ, शंकर सिंह राम सिंह रघुवंशी उनका पूरा नाम था और शंकर जयकिशन की जोड़ी थी और इस नाम से उन्होंने संगीत दिया। तो चलिए, जाने से पहले चलते चलते इस कार्यक्रम का यानी स्लॉट का आखिरी गीत मैं आपकी नज़र करता हूँ और मिलेंगे ठीक 10:03 पर कार्यक्रम नमस्ते भारत में, और शंकर जयकिशन के संगीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो चलिए, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, गौर से सुनिएगा।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम मस्त मुंबई खत्म होता है। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप समाचार। सुनते रहिए एफएम रेनबो।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक मुंबई। 10:40 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं FM रेनबो। ये समय है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस PLB को मंजूरी दे दी है। इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेल कर्मी भी शामिल हैं। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू कल देर रात 300 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ मुंबई पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और भारत कनाडा व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते पर चर्चा की। अंत में क्रिकेट। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर हैं। श्रृंखला का अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।

के चाहने वालों, वेलकम बैक। 10:02:46 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो। कार्यक्रम होगा नमस्ते भारत, और आज का हमारा टाइटल है कहानियां सुनाती हैं। तो एक ऐसी महान हस्ती के बारे में बात करेंगे जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है, जिनके नाम का हमेशा डंका बजता रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि आज मैं किस महान हस्ती के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि वो इतने लोकप्रिय रहे हैं दोस्तों कि पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है, और आज खास दिन भी है। तो अगर आप जानते हैं कि किस हस्ती के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो व्हाट्सएप के ज़रिए उनका नाम हमें बता सकते हैं। और गीत संगीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, यानी शंकर जैक्शन के संगीत बद्ध गीत उनके गाने में आपको 11 बजे तक सुनाता रहूंगा। तो चलिए आगाज करते हैं, और व्हाट्सएप पर आपके संदेशों का मुझे इंतजार है। दिल की बात दिल से सुनी जाती है, तो गौर से सुनिएगा।

0: UCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम,
2: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
1: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कॉम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
2: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
1: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
2: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम, ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
3: ज्या इंधनावर 15 ते 20 वर्ष संशोधन झालंय, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री, ARAI, SIMA, BIS सारख्या संस्थांनी तिला परखून घेतलंय, नीती आयोगाने स्वतः तिची अंमलबजावणीचं धोरण तयार केलंय,
4: तर मग ती विश्वासार्हच असणार ना?
3: अगदी बरोबर, E20 तसंच वैज्ञानिक दृष्ट्या प्रमाणित आणि सुरक्षित इंधन आहे। भारत सरकारचा उपक्रम, तेल विपणन कंपन्यांद्वारे जनहितार्थ प्रसारित।

जी हाँ, मुंबई सिटी 10:26 और 6 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत, और जैसा कि मैंने कहा था कि आज एक बहुत बड़ी हस्ती की हम चर्चा करने वाले हैं, जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है, जिनके नाम को सब बहुत ही सम्मान के साथ, प्रेम के साथ लेते हैं। दोस्तों, आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है और इनका नाम है APJ अब्दुल कलाम साहब। ये कितनी बड़ी हस्ती हैं, कितनी बड़ी शख्सियत है, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम इन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। अब्दुल कलाम साहब का नाम लेते ही हर हिंदुस्तानी का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। एक ऐसी महान हस्ती जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लेकर

साथ प्रेम के साथ लेते हैं। दोस्तों, आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है और इनका नाम है APJ अब्दुल कलाम साहब। ये कितनी बड़ी हस्ती हैं, कितनी बड़ी शख्सियत है, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम इन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। अब्दुल कलाम साहब का नाम लेते ही हर हिंदुस्तानी का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। एक ऐसी महान हस्ती जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लेकर

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आपकी पसंद की कोई भी कार लीजिए, कॉस्मोस कार लोन तो है ही। कार लोन 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% से, टेन्योर 7 साल तक, नियम व शर्तें लागू, 0 प्रोसेसिंग फीस। सफर सुहाने साथ कॉस्मोस कार लोन के। आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन करें समृद्ध।
2: अरे या E20 ला घेऊन काय कन्फ्युजन आहे?
3: मला तर फुल कॉन्फिडन्स आहे, तज्ञांनी टेस्ट केल्यावर कोणत्याही इंजिनची झीज आढळली नाही। E20 मुळे इंजिन नॉकिंग कमी होतं आणि हाय ऑक्टेन मुळे पिकअपही अमेझिंग मिळतो।
2: मग तर नो कन्फ्युजन, ओनली कॉन्फिडन्स।
3: भारत सरकारचा उपक्रम, तेल विपणन कंपन्यांद्वारे जनहित।

जी हाँ, मुंबई सिटी 10:37 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और बात कर रहे थे माननीय APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में, और हमारे कुछ लिसनर्स ने एकदम सही जवाब दिया। पुणे से राकेश माथुर जी का जवाब एकदम सही है, और जैसा कि राकेश जी आपने लिखा कि आज वर्ल्ड स्टूडेंट डे भी है जो कलाम साहब की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। और दूसरे हमारे लिसनर हैं देवेंद्र सोनावने, और इन्होंने ठाणे से सही जवाब भेजा है। अजय साखरे हिंदुस्तान के सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर से हैं, और आपका जवाब भी एकदम सही है सर। और अंधेरी से तनुजा शर्मा का जवाब एकदम सही है। अजमेर से लाली झा का जवाब भी एकदम सही है। तो इन लिसनर्स ने एकदम सही आंसर्स दिए और बात कर रहे हैं कलाम साहब के बारे में। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा उनके बारे में करते हैं और फिर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था, और उनका जन्म एक बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने अखबार बेचने का काम भी किया था, लेकिन बचपन में वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे,

अच्छे नहीं थे, उनके मार्क्स बहुत कम आते थे, लेकिन फिर भी वो बहुत मेहनती विद्यार्थी थे और उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वो भारतीय युवा सेवा में फाइटर पायलट बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए, वहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। शायद कुदरत उनसे, नेचर उनसे कोई बहुत बड़ा काम करवाना चाहती थी, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। और बाद में वो भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, और उन्होंने एक वैज्ञानिक के तौर पर 40 साल तक काम किया। भारतीय सेना के लिए मिसाइल्स बनाई, इसलिए उन्हें सम्मान के साथ भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। जी हाँ, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से उन्हें जाना गया। भारत के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में भी उन्होंने बहुत ही खास भूमिका निभाई थी। वाकई कलाम साहब, ये देश और हर हिंदुस्तानी हमेशा आपका कर्जदार रहेगा, आपका ऋण हम कभी उतार नहीं पाएंगे। आपने इस देश के लिए इतना किया है कि शायद एक जन्म में इतना करना असंभव है। तो चलिए, अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, गौर से सुनिएगा, मोहब्बत से सुनिएगा।

0: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम,
1: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
0: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
1: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
0: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम, ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।

जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और बात कर रहे हैं ऑल टाइम ग्रेट, एक महान हस्ती एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। भारत के 11वें राष्ट्रपति बने जुलाई 2002 से लेकर जुलाई 2007 तक। जी हाँ, एक राष्ट्रपति के तौर पर वो बहुत ही लोकप्रिय रहे, बहुत ही पॉपुलर रहे, इसलिए उन्हें भारत के लोगों का राष्ट्रपति भी कहा गया। वो 5 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे। जुलाई 2007 के बाद वो फिर से शिक्षा, लेखन और सोशल सर्विस के

फील्ड में आ गए और वहां पर उन्होंने बहुत ही हमेशा की तरह शानदार काम किया। कलाम साहब अपनी जिंदगी में बहुत सारे उन्होंने अवार्ड जीते, सम्मान हासिल किया। भारत सरकार ने उन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया, जो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। कलाम साहब दोस्तों एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छे, बहुत उम्दा इंसान भी थे, एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जिनसे उनकी सोच के बारे में पता चलता है, उनकी ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। उनकी मशहूर किताबें हैं जैसे विंग्स ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट्स, इंस्पायरिंग थॉट्स, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, द फैमिली एंड द नेशन, माई इंडिया। इन किताबों को पूरी दुनिया में पढ़ा गया, समझा गया और इसके लिए कलाम साहब को बहुत सम्मान मिला, बहुत प्रेम मिला। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मोहब्बत के साथ सुनिएगा।

जी हाँ दोस्तों, हमारे एक और लिसनर हैं प्रकाश शिंदे और प्रणव शिंदे मानखुर्द से। आप दोनों का जवाब भी बिल्कुल सही था और मैं आपका नाम मिस कर गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। 10:53 और 26 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों। आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे थे APJ अब्दुल कलाम साहब को और उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है।

तो चलते चलते एक बार फिर से उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं। सुनते रहिए FM रेनबो। और जाते जाते दो गाने बैक टू बैक मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। मैं हूं आरजे स्वेच्छा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर सुन सकते हैं। इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा में पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित तालुकों में फसल नुकसान का तत्काल आकलन करने के निर्देश जारी किए हैं, जिला कलेक्टर को दिए गए हैं। राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव पाटिल ने बताया कि आकलन के दौरान तस्वीरों और GPS के जरिए फसलों की स्थिति दर्ज की जाएगी और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा की जाएगी। देशभर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है। धन्यवाद।

हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ आरजे स्वेच्छा और आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स। समय हो रहा है ठीक 11:08 और ये समय है हमारे ब्रेक फ्री प्रोग्राम का। आप सभी

का स्वागत करती हूँ आज के प्रोग्राम में, और बात करना चाहूँगी त्योहारों के बारे में. मतलब कि आज अब धीरे धीरे त्योहारों की फीलिंग आने लगी है, और हमको हर तरफ वैसा माहौल दिखने लगा है. हर तरफ लाइट्स हैं, साउंड्स हैं, कलरफुल कपड़े हैं. तो आज गाने तो सुनेंगे ही हम, लेकिन उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जब मैं मुंबई में त्योहार आना, मतलब ना कैलेंडर से पहले ना लोकल ट्रेन से पता चल जाता है. मैं आज आ रही थी तो पूरे स्टेशन पे मुझे रंग बिरंगे कपड़ों में लोग दिख रहे थे. और अभी तक ना लोकल में जैसे सुबह सुबह सबके चेहरे पर नींद या हाथों में मोबाइल दिखाई देते थे, मोबाइल तो अभी भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक ना वही लोकल में रंग भरने लगे. इतने सारे लोग रंग बिरंगे कपड़ों में, आज किसी ने पीला पहना है, कई लोगों ने हरा पहना है, कल कुछ और पहनेंगे, कई लोग पूरे अपना ना यू साड़ी चूड़ी पूरे अटायर में. लड़कियां बहुत खूबसूरत लग रही थी और पूरी तरह त्योहार वाले मूड में नजर आई. मुंबई की लोकल में ना नवरात्रि के दौरान रंगों के साथ एकदम ऐसा कलरफुल माहौल देखने को मिला. साथ ही साथ यही एक बहुत जहाँ पे लोग एकदम बिजी तो रहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में, लेकिन उसी के साथ साथ सफ़र करते हुए भी आप ये सब जब देखते हैं तो आपको त्योहार और करीब से महसूस होते हैं. तो इसी त्योहारों के नाम आज का दूसरा गीत, और ऐसे ही हंसते रहिए, खुश रहिए, और सुनते हैं अगला गाना.

0: बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: मेरी बाइक में नॉथिंग कम है।
2: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
3: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
4: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
5: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम।
6: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
5: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कॉम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
6: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
5: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
6: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
5: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन करें समृद्ध।

जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना जावेद अली की आवाज़ में। वैसे जब बात त्योहारों की चल ही रही है, तो कई बार हम बाहर जरा सोचिए, मुंबई में रहने वाले कितने लोग ऐसे हैं या किसी और भी शहर में जो अलग अलग दूसरे शहरों से आए हैं,

0: कई बार जब त्योहार नजदीक आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि घर जाना चाहिए। कई लोग जाते हैं बट कई लोग मजबूरी में कभी कभी नहीं जा पाते। तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि इस शहर में लोग काम कर रहे हैं इस शहर, लेकिन जब त्योहार होता है तो अपने घर की याद आती है। किसी की जब यहाँ लोग आते हैं तो लोगों की आंखों में ना नौकरी का सपना होता है, किसी के मन में अभिनय करने की इच्छा होती है, किसी को पढ़ाई करनी थी, तो कोई अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी का एक सपना सोच के आया था। शुरुआत में ना ये शहर थोड़ा अजनबी लगता है, रास्ते याद नहीं रहते, लोकल के प्लेटफॉर्म समझ नहीं आते, और कभी कभी तो ये भी समझ नहीं आता कि इतनी तेज भागती दुनिया में अपने लिए जगह कैसे बनाए। लेकिन धीरे धीरे यही शहर आपकी आदत बन जाता है। जिस स्टेशन पर पहली बार उतरकर आप रास्ता ढूंढ रहे थे, कुछ समय बाद वही किसी दोस्त का इंतजार करने लगते हैं। जिस गली में कभी खो गए थे, वही आपकी पसंदीदा चाय की दुकान बन जाती है। और एक दिन महसूस होता है कि घर सिर्फ वो जगह नहीं जहां आप जन्म लेते हैं, घर वो जगह भी हो सकता है जहां आपने अपने लिए और अपनों के लिए कुछ सपने देखे और उनको थोड़ा थोड़ा करके सच करना सीखा। तो त्योहारों की खुशी में खुश रहते हैं और अपने लोगों से आप जुड़े रहिए, अपने लोगों से बात कीजिए। जो अपने घर में है वो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग घर से थोड़ा दूर है उनके लिए भी ये शहर अपना ही है। तो इसी बात पे सुनते हैं अगला गाना, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: करो या इन्वेस्टिंग सा धड़ा।

0: वाचवणार नाही
1: पैसे वाढवू रे
2: समजून इन्व्हेस्टिंग
3: समजून सेबीकडून इन्व्हेस्टर जागरूकता उपक्रम अधिक माहितीसाठी सेबी इन्व्हेस्टर वेबसाईटवर व्हिजिट करा किंवा सेबी सारथी ऍप डाउनलोड करा.
4: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है.
5: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है.
6: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है.
7: व्हीकल कोई भी हो पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है. कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग. योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20. भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी.
8: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
6: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी.
7: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है. वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित. भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी.
4: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है.
5: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है.
6: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है.
7: व्हीकल कोई भी हो पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है. कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग. योर पेट्रोल व्हीकल इज 100%
9: शुरू करो या इन्वेस्टिंग का धड़ा.

0: किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: ACP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम,
6: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
5: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
6: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
5: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
6: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम, ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
5: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।

त्योहारों की बात करते हुए और गाने सुनते हुए समय का पता ही नहीं चला। समय हो रहा है 11:53 और ब्रेक फ्री लगभग अपने अंतिम मोड़ पे है। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी, कभी कभी जब बात त्योहारों की चल रही है तो त्योहारों की बात में तैयारियां भी हैं, तैयारियां पहले करनी पड़ती हैं। तो कभी कभी ना ये तैयारियां भी अपने आप में बहुत खुशी देती हैं, मतलब कि अरे वाह त्योहार आने वाला है, उसकी अलग ही एक्साइटमेंट होती है ना। चाहे घर के काम हो, चाहे कपड़े चुनने हो, या लोगों से अपने बारे में, अपने दोस्त से कोई सलाह लेना हो, या अपने पुरानी कोई चूड़ियाँ सामान निकालना हो। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि त्योहार मनाने के लिए आपको हर दिन कहीं बाहर जाने की या महंगे कपड़े खरीदने की ज़रूरत है। त्योहार का आनंद आपकी सुविधा के हिसाब से भी हो सकता है। घर पर एक दिया जलाना, कोई अच्छा गाना सुनना, परिवार के साथ बैठकर खाना खाना। मुझे लगता है त्योहार हमें एक छोटी सी बात सिखाता है, जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने लिए खुशी के पल बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ अगले लक्ष्य तक नहीं पहुंचने का नाम है, रास्ते में जो छोटे छोटे खूबसूरत पल मिल रहे हैं उन्हें हमें महसूस करना उतना ही ज़रूरी है। तो इस त्योहारों के मौसम में खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव मत डालिए, बस

कीजिए, खुश रहिए, जितना हो सके उतना मन से खुश रहिए, त्योहार मनाइए, अपनों के साथ समय बिताइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा करके, महंगा करके ही आपका त्योहार मनेगा। सिर्फ दिल से खुशी ही बहुत ज़रूरी है, अपनों का साथ हो तो सारे त्योहार अच्छे हो जाते हैं। तो अब मैं ब्रेक फ्री का जो है, वो ब्रेक फ्री अपने अंतिम चरण पे है, ब्रेक फ्री से मैं ब्रेक फ्री को समेटती हूँ, और इसी के साथ हम नेक्स्ट म्यूजिक कैफे में मिलेंगे। तो आपको छोड़ के जा रही हूँ मैं आखिरी गाने के साथ। आप सभी को नवरात्रि की और आने वाले सारे त्योहारों की बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी के साथ आखिरी गाना, और फिर उसके बाद हम मिलेंगे म्यूजिक कैफे में। आप बने रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो पर।

नमस्कार, इस घंटे के मुख्य समाचार। देश में घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री सितंबर में सालाना आधार पर 21.8% बढ़कर 4,54,574 इकाई हो गई। उद्योग संगठन सियाम ने यह जानकारी दी। सितंबर 2025 में थोक बिक्री 3,73,347 इकाई रही थी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान रखते हुए चुनिंदा व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर को दिवाली के तुरंत बाद लागू करने का निर्णय लिया है। इससे पहले एनपीसीआई ने यह दर आज से लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब नई दर दिवाली के बाद लागू की जाएगी। मुंबई पुलिस ने आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के मामले में बॉलीवुड अभिनेता एवं अमेरिकी नागरिक इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई 10 अक्टूबर को मुंबई में हुए एक विरोध प्रदर्शन में उनके भाग लेने के बाद की गई है, जहां प्रदर्शनकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग कर रहे थे। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के आईडीबीआई बैंक में 60.72% हिस्सेदारी करीब 53,000 करोड़ रुपए में खरीदने के सौदे की घोषणा के बाद आज बैंक के शेयर में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। धन्यवाद।

एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ म्यूजिक कैफे में। समय हो रहा है 12:11 और ये समय है म्यूजिक कैफे प्रोग्राम का। आप सोच रहे होंगे एकदम त्योहारों से सीधे हम पुराने गानों पे कैसे पहुंच गए, रेट्रोस पे कैसे पहुंच गए। तो आज ना मैं कुछ ऐसे ही गाने आपको सुनाने वाली हूँ जिनकी जो जो मूवीज हैं, जो किताबों से उठाकर उनको पर्दों पे दर्शाया गया है। मतलब कहानी पहले किताब के पन्नों पर जन्म ली थी कहानियों ने, लेकिन और फिर उसके बाद बड़े पर्दे पर आकर लाखों लोगों के दिल में बस गई थी। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही फिल्मों की जिनकी कहानियों की जड़ें किताबों में छुपी हैं। जो किताबें लोगों ने लिखी उनको बड़े पर्दे पे लोगों ने दर्शाया। तो शुरुआत हमने की थी गाइड फिल्म से, जो कि 1965 की फिल्म, और इसको लिखा था आर के नारायण जी ने। उनका इंग्लिश यानी अंग्रेजी उपन्यास नॉवल था द गाइड पर, इस पर यह फिल्म आधारित थी, जिसमें देवानंद राजू गाइड बने थे और वहीदा रहमान ने निभाया था रोजी का किरदार। लेकिन इस फिल्म की खास बात सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है। राजू की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक आम इंसान को लोग आध्यात्मिक गुरु मानने लगते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि किताब और फिल्म का अंत एक जैसा नहीं है, यानी एक ही कहानी, लेकिन किताब और सिनेमा का नजरिया अलग अलग। तो चलिए, इसके बाद हमने गाइड से शुरुआत कर दी है, इसके बाद हम अगली फिल्म की बात करते हैं और उसकी कहानी जो है, जहां मोहब्बत के साथ साथ शायरी और नवाबी तहजीब भी है। तो मैं बात कर रही हूँ उमराव जान की। ये फिल्म मिर्ज़ा हादी रुसवा की उर्दू उपन्यास उमराव जान अदा पर आधारित है। कहानी है अमीरन की, जिसे बचपन में उसके परिवार से अलग कर दिया गया है और आगे चलकर वह उमराव जान के नाम से मशहूर होती है। इस फिल्म का एक खूबसूरत पहलू भी है, इसकी शायरी और इसका संगीत। गजलों के जरिए किरदारों की भावनाएं सामने आई हैं और रेखा जी की अदाकारी, और इस मूवी को एक बार और बनाया गया है, दो बार बनाया गया, एक बार रेखा जी ने इसमें अदाकारी की है और एक बार ऐश्वर्या राय बच्चन ने। तो वो सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा का यादगार पहचान बन गई है। तो इस फिल्म से हम अगला गाना सुनते हैं, उसके बाद हम और फिल्मों की बात करेंगे जो कि उपन्यासों पर आधारित हैं। और आप भी कुछ ऐसी फिल्में जानते हैं तो मुझे उसके नाम ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071 पर, और सुनते

0: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम।
1: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
0: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कॉम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
1: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
0: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
2: भावा, दररोज 6 ते 7 कोटी वाहनात इंधन भरलं जातं। देशात 23 कोटीहून अधिक गाड्या 2.5 वर्षांपासून E20 वर चालत आहे।
3: सगळं तर एकदम व्यवस्थित चाललंय।
2: तेच तर, काही समस्या असती तर आतापर्यंत समोर आली असती। अफवांवर नाही, तथ्यांवर विश्वास ठेवा।
4: भारत सरकारचा उपक्रम तेल विपणन कंपन्यांद्वारे जनहितार्थ प्रसारित।
5: हर किसी को चाहिए अपने सपनों का घर और हर किसी को चाहिए किफायती ब्याज दर। कॉस्मोस होम लोन, ब्याज दर 7.80% से शुरू, 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध, टेन्योर 25 साल तक और 0 प्रोसेसिंग फी। नियम व शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
6: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
7: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
6: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
7: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
6: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

बात हम कर रहे थे उन फिल्मों की जो उपन्यासों के ऊपर बनाई गई हैं, जिन्हें इतने खूबसूरत तरीके से लोगों ने लिखा और उसके बाद उनके ऊपर फिल्में बनी थी। तो अभी हम जो गाना सुन रहे थे, ये था टू स्टेट मूवी का, जो कि टू स्टेट स्टोरी ऑफ माय मैरिज नाम के उपन्यास से ली गई है। इसमें कृष और अनन्या की कहानी है, जो अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग जगहों से होते हैं, उसके बावजूद भी वो अपने प्यार को पाने के लिए जो भी करते हैं, अपने परिवार को मनाते हैं, और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। चेतन भगत जी का ये उपन्यास है। और इसके बाद हमारा 12:30 बजे से उमंग कार्यक्रम शुरू होगा। उसके पहले मैं आपको एक और गाना सुनाऊंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत उपन्यास है, देवदात देवदास का, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ ये उपन्यास। प्यार दुख, हमारे गलत और देर से लिए गए फैसलों, इन सब को दिखाता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो इस पिक्चर का ये गाना हम सुनते हैं, और इसी के साथ म्यूजिक कैफे से मैं विदा लेती हूँ। और अब हम मिलेंगे हिट एंड हॉट में। आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे 8657661071 पर, और सुनते रहिए FM रेनबो।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं, उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग NCERT का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा। इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ CIT NCERT की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमधा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने। और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। वॉट ए कोइंसिडेंस इट इज दैट आई रेड दिस पोएम इन माई चाइल्डहुड इन द टेक्स्ट बुक and got it listened to it in a musical form. I liked this poem and song very much. Thank you very much. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के

कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबरा कर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा। मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो? बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी। यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन यह हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको बहुत थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए, उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी यूएसबी पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और यूएसबी कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया। ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओ, उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे, लेकिन श्रोताओं, आपको बताना चाहता हूं, उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 MB। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं, उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में सीडी और डीवीडी के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओं, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है। यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओं, अगर 1998 की उस शाम डॉब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक सीडी के जंजाल में ही उलझे होते। जी हां श्रोताओं, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं, तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव

0: की खोज की। श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
3: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
1: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
2: क्या आप में से किसी ने एक आम खाया है?
1: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
3: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
1: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
3: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
1: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
4: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे, अगर आप में से किसी ने एक आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थी। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
1: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
3: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
1: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
5: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
6: तो बच्चों, आपने सुनी है कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज, पत्ती, फूल और फल इनके

0: आने की सही तरतीब क्या है, आपने कौन कौन से आम खाए हैं उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन, दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
4: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
5: बिल्कुल ठीक है।
4: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: जय जयरापुर, जय भारत।
7: जय जयरापुर, जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जयरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
8: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
8: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
9: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
4: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
9: जी।
4: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
9: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
4: बिल्कुल,
9: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
4: जी मंत्री जी।
9: जी महाराज।
3: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
6: होशियार, खबरदार, रियासत जयरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज।

0: से महाराजा रहे हैं। महाराज जोर से
1: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखें और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
2: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
1: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
2: देखिए निजाम साहब।
1: जी फरमाइए।
2: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
1: जी,
2: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
1: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
2: जी,
1: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
3: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
4: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
5: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
3: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
6: बिल्कुल।
3: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
6: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
3: लेकिन जरा होशियारी से।
6: जो हुकुम सरकार।

0: Bunny.
1: Look out! तुम चारों तरफ से घिर चुके हो.
0: ये क्या है?
1: You are under arrest.
0: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ. आओ सामने.
1: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी. फौजियों,
2: हुजूर,
1: बांधो इस बच्चे को जंजीर से.
2: जी.
3: हाँ. छोड़ो मुझे. हाथ मत लगाओ मुझे. मुझसे हाथ हटाओ. मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से.
1: शाबाश, शाबाश, सारा जंग. मैं खुश हुआ. तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा.
2: हुजूर.
0: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है. एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है. लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है. लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था.
1: ले चलो इसको. चलो
3: मुझे. छोड़ो मुझे.
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए. उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया. उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए. तरह तरह के

0: लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े।
1: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
2: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
3: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
2: देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
3: ये नामुमकिन है।
2: वाय,
3: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
2: तो तुम नहीं मानोगे। देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
3: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
2: एक्चुअली यू आर अ फूल।
0: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
1: काला पानी की सजा?
0: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
1: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
0: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
3: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
1: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सभी का स्वागत है हिट एंड हॉट में, आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसमें आप अपने मनपसंद गाने भेजते हो। और हमने शुरुआत की है इस गाने के साथ जो लता मंगेशकर जी ने गाया, बेहद खूबसूरत गाना। मैं आप सभी के मैसेजेस पढ़ रही हूँ और आप सबकी रिक्वेस्ट भी पूरी करने की कोशिश करूँगी। यश शिंदे जी ने एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज जो है वो लिखा है, तो मैं वो पढ़ना चाहूँगी। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का एक अंदाज होना चाहिए। कल की फिक्र में आज का सुकून ना खोना, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, बस इसे हंसते हुए जीना। दौड़ते भागते दुनिया में दो पल रुकना भी सीखो, खुद से मिलना और जिंदगी को जी भर के जीना सीखो। बहुत ही खूबसूरत बात आपने लिखी है और इसी बात के साथ मुझे एक बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है जो कि मैं नेक्स्ट प्ले करने वाली हूँ, जो पंकज महोट जी ने भी बोला है और यश शिंदे जी की बात से भी बिल्कुल मैच करेगा। और ये गाना सुनते हैं, उसके साथ ही साथ हम इसके बाद सुनेंगे दीपा पालकर जी का गाना उड़ी उड़ी जाए। त्योहारों में चार चांद लगा दिए इस गाने ने, तो हम उनकी फरमाइश का ये गाना सुनेंगे। और उसके बाद हम सुनेंगे राकेश माथुर जी का तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है। तो चलिए सुनते हैं बैक टू बैक गाने, इन गानों के बाद मैं आगे की फरमाइशें पूरी करूंगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो। मैं हूँ आज स्वेच्छा।

म्यूजिकली योर्स 1:40 का समय हो रहा है और आपकी फरमाइशें हैं जो रुक नहीं रही है। अभी मैंने जो न्यूज़ के पहले गाना प्ले किया था, हर दिल जो प्यार करेगा, वो हितेंद्र दास जी ने फरमाइश की थी, और अब मैं अगला गाना पेश कर रही हूँ। उन्होंने लिखा है, मेरा नाम गौरव कुकाड़ी है, मैं आपके FM का नया श्रोता हूँ। मैं अपनी खूबसूरत और प्यारी पत्नी मोनाली कुकाड़ी के लिए गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। गाना है विवाह मूवी का, दो अनजाने अजनबी। पहली बात तो वो हमारे नए श्रोता हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। उसी के साथ बहुत ही खूबसूरत गाना है, और उनकी खूबसूरत पत्नी मोनाली कुकाड़ी जी के लिए हम ये गाना ज़रूर प्ले करेंगे। और उसी के साथ साथ एक और रिक्वेस्ट आई है आकाश की, जिन्होंने अपनी प्यारी और खूबसूरत पत्नी सोनम शर्मा के लिए गाना डेडिकेट किया है। गाना है बदलापुर का जीना जीना, और इस गाने को भी हम प्ले करेंगे। आप लोग हमारे नए श्रोता हैं, तो हमारा FM रेनबो ज़रूर सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, और हम सुनते हैं ये दोनों फरमाइशें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज नए श्रोताओं के गाने भी सुन लेते हैं ज़रा।

समय हो रहा है 1:53 और हिट एंड हॉट का कार्यक्रम अब समाप्ति पे है। अभी जो मैंने गाना चलाया था वो अजय साखरे जी ने फरमाइश की थी, सांस में मेरी सांस मिले। मैं उन सभी लोगों के नाम लेना चाहूँगी। लास्ट गाना मैं बजाना चाहूँगी छल का, जो कि विजेंद्र घटोल जी ने बोला की फरमाइश है, तो वो गाना मैं लास्ट बजाऊंगी। उसके साथ ही साथ आप सब लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो मैं सबके नाम लेना चाहूंगी। स्वरण सिंह जी, फिरोज शेखनपुरिया, प्रमोद चिंचोलकर जी और शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, ये सभी झारखंड से, सोनू, रविराज, गुलशन, लकी, सौरभ शर्मा, प्रवीण जी, अभिजीत गवानकर जी, मुकेश कश्यप जी, जगजीत सिंह, जगदीश सिंह जी, राकेश माथुर, दीपा पालकर जी, हरजिंदर सिंह जी, यश शिंदे, यशवंत आडमुड़े, फरमान जी, प्रकाश शिंदे, जूली सिल्वेरा, पंकज मोहर, संदीप कुमार जी, सुबह लक्ष्मी मस्तकर, अजय साखरे इंदौर से, हीरामणि वर्मा दिग्दर्शन और कविता, दत्ता केदार जी, मिंटू, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, सुयोग महाजन जी, हितेंद्र दास, राजेंद्र परमार बाबा दादर से, आकांक्षा मनोज सिन्हा, अंजू जी अंधेरी ईस्ट से, दीपाली शिरोडकर, आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब समय, अब मैं आपको बस आखिरी गाने के साथ छोड़ के जा रही हूँ। आज का प्रोग्राम यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ध्यान रखिए और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो। मैं हूँ आरजे स्वेक्षा, अब आपसे इजाज़त लेती हूँ, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक यही यूं ही त्योहारों के रंग और खुशियों के संग आपको छोड़ के जा

0: पहुंच रही हैं।
1: इट इज नोट वर्दी मोटिवेटेड बाय द पीएम स्पिरिट ऑफ जन सेवा से देश सेवा सुनील जागलान सेल्फी विद डॉटर कैंपेन कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन फीलिंग द पीपल प्राउड आफ्टर पोस्टिंग सेल्फी विद देयर डॉटर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रीक्वेंटली मेंशन सुनील जागलान सेल्फी विद डॉटर कैंपेन इन हिज मन की बात प्रोग्राम एंड हेल्प ट्रांसफॉर्म इट इंटू अ नेशन वाइड मूवमेंट। Originating from a remote area, this initiative has now evolved into a global campaign. Ashwini Kumar Sharma, Akashwani News, Chandigarh.
2: This is Akashwani giving you the news. Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube. Welcome back to the Midday News. Defence Minister Rajnath Singh has said that India is exporting indigenous defence products to nearly 100 countries worldwide. He said that India's defence exports have surged from just 686 crore rupees in 2013-14 to more than 38,000 crore rupees in 2025-26. Speaking at the Defence Conclave 2026 of a private channel in New Delhi today, Mr. Singh said India has achieved more than 90% self-reliance in ammunition variants.
3: Hope for the peace, but prepare for war. War that may be necessary to protect our country's sovereignty, territorial integrity, and national security. Yani shant ki aasa rakhiye, lekin yuddh ke liye sadaiv tayar rahiye.
2: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman met the UK Chancellor of the Exchequer John Healey on the sidelines of the annual meetings in Bangkok today. During the meeting, the Finance Minister reaffirmed India's commitment to working closely with UK towards shared priorities and a constructive, inclusive G20 process. Nirmala Sitharaman arrived in Bangkok today to attend the annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank. She will also participate in the G20 and G7 finance ministers and central bank governors meetings. Prime Minister Narendra Modi will interact with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 in New Delhi this evening. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. Indian wrestler Vishwajit Ramchandra More has created history by clinching a historic silver medal in the Greco-Roman finals at the Under-23 World Championships in Las Vegas today. Competing in the men's 55-kilogram category, More narrowly lost 12-13 to Georgia's Koba Karumidze in the final seconds of the bout. The Indian Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall expected over Haryana, Chandigarh, Punjab and Delhi today. The Met Department also said heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till the 21st of this month. The higher reaches of Doda district in Jammu and Kashmir experienced the season's first snowfall. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh. Hindus converting to Islam and other religions cannot claim backward class reservations, says Supreme Court, upholds Madras High Court order. Home Minister Amit Shah says government is committed for betterment of tribals affected by Naxalism, distributes assistive devices to persons with disabilities. India's defence exports surge to 38,000 crore from 686 crore rupees in the last 13 years, says Defence Minister Rajnath Singh. Upper reaches of Himalayan region receive season's first snowfall. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Punjab and Delhi today. And Indian wrestler Vishwajit Ramchandra More creates history by clinching silver medal in Greco-Roman finals at Under-23 World Championships in Las Vegas. With that, we end the Midday News.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। श्री शाह ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। हिमालय क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में आयोजित अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
0: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
4: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालतसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिमसरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसके विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
0: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
4: श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से संवारने, उन्हें सहायता देने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
5: नरेंद्र मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प था कि हम 31/3/2026 के पहले पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करेंगे। मुझे आनंद है आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका, मगर नक्सलवाद समाप्त होने से 5 दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
4: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ये बैठक हाइब्रिड कार्यशाला के रूप में हुई, जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने की। श्रीमती चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भाषा के महत्व पर जोर दिया। बैठक में देशभर के प्रमुख भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जनजातीय समुदायों के भाषा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
4: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़े

0: वन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।
1: न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है, जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
2: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन एंड ऑफ वार। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के राष्ट्र के दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव को दर्शाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के हर स्रोत तक पहुंचकर उसका खात्मा करना है। श्री सिंह ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक के कारवार स्थित कदम नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत समर्थक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला पहला स्वदेशी बहुद्देशीय पोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
3: सरकार के एक प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फी विद डॉटर के जनक जींद जिले के बीबीपुर गाँव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से बेटियों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।
4: अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार घट रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात जो 879 हरियाणा का होता था वो 920 925 930 तक आज के समय चला जाता है। और खास बात ये रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
3: उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा से

0: देश सेवा की भावना के साथ शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान का बेटियों के प्रति नजरिया बदलने में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल दिया। दूरदराज क्षेत्र से निकला यह अभियान अब एक वैश्विक अभियान बन चुका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
2: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबूधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 21 तारीख तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारुमित्ज़े से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र मोर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त दिन के 3 बज रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। तो आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म गाइड के इस गीत के साथ, लता मंगेशकर की आवाज में।

पीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। श्री शाह ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच देश अपनी परिस्थितियों के अनुसार नई साझेदारियां और विकल्प तलाश रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट जारी करने की मांग की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने बताया कि भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2025 तक 9% की वृद्धि के साथ 2,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उत्तर रेलवे ने आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर विशेष आरक्षित त्योहार रेलगाड़ियां चलाने और मौजूदा फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा तथा गरज चमक के साथ ओलावृष्टि होने का अनुमान है। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। नीतेश घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। आगे हमारा प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। आज का प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और आज के हमारे संदेश टू सोल्जर्स के बहुत ही विशेष अतिथि हैं कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन, और हम उनका स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारे इस खास शो में। कर्नल कंवर भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय निकाला और आज आप हमारे शो में शामिल हुए हैं। हम अपने लिसनर्स को बता दें कि आप हमारा शो लाइव सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में, और आप हमें मैसेज करके कर्नल कंवर भारद्वाज से सवाल कर सकते हैं, कुछ बात करना चाहे तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और हमारे साथ आज के बहुत ही विशेष अतिथि जिन्होंने देश को देश की सेवा में दो पीढ़ियों से ज्यादा की सर्विस दी है डिफेंस सर्विसेज में, कमीशन किए गए कर्नल कंवर भारद्वाज इंडियन आर्मी में 11 जून 1967 को राजपुताना राइफल्स इन्फेंट्री में। 1971 वॉर वेटरन है कर्नल कंवर भारद्वाज। 1971 वॉर में उन्होंने कंपनी कमांडर के तौर पर लड़ाई लड़ी, उसके बाद उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे

0: करके नहीं देखा और किस तरह से शुरुआत हुई वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बातचीत शुरू करते हैं हमारे आज के खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज से। सर, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से हुई शुरुआत आपका, या परिवार में कोई बैकग्राउंड नहीं था, आर्मी से आप किस तरह से जुड़े, कैसे वो जज्बा आपके दिल में आया?
1: मैं अपने बारे में बताने के साथ ये मैं कहूँगा कि मैं एक बहुत ही जमींदार फैमिली का तीसरे नंबर का बेटा था
0: जी।
1: और मेरे पिताजी जो थे वो एक फार्मर थे, और उसमें जो मैंने मैट्रिकुलेशन किया वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके और आर्मी ज्वाइन की एज ए जॉन।
0: अच्छा।
1: और टेक्निकल रेजिमेंट सिग्नल्स के अंदर मेरा इंट्री हुआ व्हेन मेरी उम्र केवल 17 साल 216 दिन की थी।
0: अच्छा।
1: और उस समय हम सिग्नल्स के अंदर रिक्रूट भर्ती किए गए थे
0: जी।
1: और वहाँ भर्ती होने के बाद में ट्रेनिंग वगैरह खत्म किया और उसके बाद में हम जालंधर पोस्टिंग हो गए एज ए जॉन।
0: अच्छा।
1: ये फौज के बारे में मोटिवेशन इतना कुछ नहीं था
0: जी।
1: एक जमींदार फैमिली से
0: जी।
1: होने के नाते कॉलेज से भागकर,
0: अच्छा,
1: फर्स्ट ईयर कॉलेज से भागकर हम आर्मी के अंदर ज्वाइन किया
0: जी।
1: और अपना मोटिवेशन यही था कि हम आर्मी के अंदर किस प्रकार से नौकरी करें
0: जी। सर, आप एक जमींदार, एक किसान परिवार से आते हैं, आपके पिताजी किसान थे, तो आपका किस तरीके से वो परिवेश रहा और अचानक फिर ऐसे आपके दिल में जो जज्बा आया फौज ज्वाइन करने के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए, तो ये कहाँ से मोटिवेशन, जैसे आपने बताया कि हमें
1: ये बहुत ही एक अजीब सी बात है
0: जी।
1: कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इतनी जल्दी नौकरी करूं।
0: अच्छा।
1: बट जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ी रहा था गवर्नमेंट स्कूल गढ़ी अरसरू में
0: जी,
1: उस समय मेरा एंगेजमेंट हो गया।
0: अच्छा।
1: और एंगेजमेंट से डर के शादी नहीं करें। अच्छा। अभी कॉलेज से भाग करके और बगैर बताए पेरेंट्स को हमने आर्मी ज्वाइन कर ली।
0: अरे वाह।
1: और आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब पता पड़ा हमारे पिताजी को कि हम
0: फौज
1: में जा रहे हैं, तो पूरा परिवार बहुत नाराज था। और पिताजी ने आकर के काफी कुछ कोशिश की, क्योंकि जो मेरी वाइफ जो शिक्षा भारद्वाज जो अभी नहीं है, तो उनके ताऊ जी वहां पे हेड क्लर्क पोस्टेड थे।
0: अच्छा।
1: सोल्जर बोर्ड में। और गुड़गांव में जब मैं भर्ती हुआ तो मेरे फादर जो है वो उनके ताऊ जी के पास पहुंच गए और मेरी कंप्लेंट की कि भर्ती होके जा रहा है, इसकी शादी वगैरह अरेंज कर रहे थे तो इसको रोको। तो मैंने बड़े रौब से बगैर ज्यादा कुछ बोलते हुए अपने फादर का बहुत रिस्पेक्ट करता था और गर्दन नीचे करके और अपने जो वुड बी फादर इन लॉ को भी ये बोल दिया कि जी फौज में जाना मेरे को अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू गो एंड ज्वाइन द आर्मी ओनली
0: जी। तो आप डिटरमिन्ड रहे, आप मजबूत रहे कि मुझे तो आर्मी ज्वाइन करनी ही है।
1: एक्चुअली ये था कि टेंथ करके अगर कॉलेज में आगे नहीं पढ़ना है
0: जी,
1: और जोश था कि आर्मी ज्वाइन करें, क्योंकि आर्मी उस टाइम पे नंबर वन प्रोफेशन होता था आज के जमाने को ना कहते हुए। एंड आई हैड द इंसिस्टिंग टू माई सेल्फ इन दैट फीलिंग कि इससे बढ़िया नौकरी कुछ नहीं हो सकती।
0: अच्छा। सर, वो कौन सा साल था जब आपने ज्वाइन किया?
1: इट वॉज 1961। रादर फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर।
0: अच्छा।
1: और वहाँ पे इतना ज्यादा तगड़ा हुआ।
0: अच्छा।
1: और जो मेरे ओडी फादर इन लॉ थे उसने जाते समय वार्निंग दे दी थी कि अगर जा ही रहे हो बगैर हमारे बताए
0: मर्जी के
1: तो वहाँ जाकर के फिर ये मत बोलना कि आप हमारा नाम कटवा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि आप पीछे हट जाएं।
1: और जिस काम से मैं भागा था
0: जी,
1: जिससे शादी ना करने के डिले करने की शादी से भागा था, जब मैं रिक्रूट ही ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरे को 10 दिन की छुट्टी बुला करके और मेरी शादी भी हो गई।
0: अच्छा।
1: व्हेन शी वाज 14 इयर्स एंड आई वाज 18 इयर्स ओनली।
0: ओके।
1: बिकॉज आई ज्वाइंट द आर्मी व्हेन माय एज वाज ओनली 17 इयर्स 216 डेज।
0: अच्छा। आप पूरे 18 के भी तब तक नहीं हुए थे
1: जी।
0: और आपने अपनी सर्विस जो है नेशन के लिए, आर्मी के लिए, फोर्स के लिए देना शुरू कर दिया था
1: जी।
0: जी, तो सर शुरुआत किस तरह से हुई? आप इन्फेंट्री में रहे, राजपूताना राइफल्स में रहे, तो यही शुरुआत थी, इससे पहले भी आपने किसी और जगह भी काम किया आर्मी में?
1: एक्चुअली जब सिग्नल के अंदर हम जवान थे
0: जी,
1: तो वहां हमारी पोस्टिंग हुई ट्रेनिंग वगैरह खत्म करने के बाद में।
0: अच्छा।
1: जालंधर, जालंधर अलेवन कोर सिग्नल रेजिमेंट, उसके अंदर पोस्टिंग हो गई। एंड व्हेन आई वाज देयर 1962 का चाइना के साथ वार हुआ
0: जी,
1: सो दैट टाइम हम

0: जवान थे।
1: अच्छा,
0: तो पूरी रेजिमेंट के अंदर काफी तहलका मचा हो रहा था और हम एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग जवान बन गए थे वहां पे। और 62 का ऑपरेशन के बाद में
1: जी
0: इमरजेंसी कमीशन स्टार्ट हुआ।
1: अच्छा,
0: तो इमरजेंसी कमीशन के दौरान
1: जी
0: मेरे को स्पेशली एक अच्छा जवान सेलेक्ट करके,
1: अच्छा,
0: और कमांडिंग ऑफिसर के साथ में कुछ एक कैंडिडेट थे जिनका इंटरव्यू कैंडिडेट करके, और कर्नल साहब को जो हमारे सीओ थे उस समय, उनको स्क्रीन आउट करना था कि कौन को हम आगे एसएसबी के लिए रिकमेंड करें।
1: अच्छा,
0: सो वो बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट है विच यू वुड लाइक टू नो।
1: जरूर सर, जरूर।
0: मेरे को ये ड्यूटी दी गई कि सबको बारी बारी कमांडिंग ऑफिसर साहब के अंदर ऑफिस में भेजते रहिए और इनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके एंड डू दैट फॉर। सो सीओ साहब 1:30 बजे लंच ब्रेक के लिए घर चले गए और जाते समय बोल गए कि मैं 3 बजे वापस आऊंगा और 3 बजे के बाद में बाकी कैंडिडेट का इंटरव्यू करेंगे।
1: अच्छा।
0: 3 बजे वो सही डॉट 3 वापस आ गए तो फर्स्ट कैंडिडेट को हमने बोला कि आप अंदर जाइए, तो वो अंदर गए तो उन्होंने जाते ही अंदर जाते ही बोला गुड मॉर्निंग सर।
1: अच्छा।
0: तो सीओ आस्क्ड हिम कि व्हाट इज द टाइम, 3:05 सर।
1: अच्छा,
0: तो वाई आर यू सी मी गुड मॉर्निंग सर। तो ही सेड के सर वी हैव बीन टोल्ड इन द सिविल इफ यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम यू मस्ट विश हिम गुड मॉर्निंग। बोलता इफ देयर इज एनी हार्म इफ यू विश मी गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, बट सर वी हैव बीन टोल्ड द सिविल लाइक दैट। ही पुट अप सम अदर क्वेश्चन टू हिम ऑल्सो, सो he was not able to reply it properly. Then he called for me.
1: Ji.
0: I in turn saluted him and he put up all those questions to me and straightway jahi wo jaise sawal sare main fatafat jawab diya to कर्नल साहब ने मेरे को तो चेयर ऑफर कर दिया, उसको बोला थैंक यू।
1: अच्छा,
0: कैरी ऑन।
1: और आपको
0: ही इंसिस्टेड मी और रादर मोटिवेटेड मी, यू ट्राई फॉर कमीशन, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर कमीशन। आई सेड सर आई एम नॉट ग्रेजुएट, आई एम मैट्रिकुलेट ओनली, आई एम नॉट फॉलोइंग द कंडीशन टू अप्लाई फॉर द इमरजेंसी
1: क्राइटेरिया।
0: एंड ही टोल्ड मी दैट ओके क्राइटेरिया नहीं है अभी, तो आप एसीसी अप्लाई करिए, यू अप्लाई फॉर आर्मी कैडेट कॉलेज एंड आई सी दैट यू गेट सिलेक्टेड। And mind you, after that I never looked back.
1: Achha.
0: There were 63 candidates from my regiment, those who appeared for initial army cadet college.
1: Ji.
0: All the tests and all that. I was the first one to get selected out of three Achha. candidates out 63 of 63, जो के SSB तक पहुँचे।
1: तो ये मोटिवेशन सर आपको
0: ये मोटिवेशन मोटिवेशन दैट वे आई गॉट मोटिवेटेड एंड आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक। आई हैड वेरी गुड कैरियर थ्रू आउट माय आर्मी कैडेट कॉलेज देन आईएमए एंड व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम देयर यू आस्क मी दैट हाउ यू गॉट इनटू इन्फेंट्री दैट टू राजपूत राइफल। सो ऑन दैट आई जस्ट टेल यू कि वहां पे जो मेरे कंपनी कमांडर थे आईएमए के अंदर वो राजपूत राइफल से मेजर शर्मा साहब थे।
1: अच्छा।
0: जो कि वार वेटरन थे और वीआरसी डेकोरेटेड थे।
1: अच्छा।
0: सो आई वॉज वेरी आउटस्टैंडिंग, माइंड यू आई मस्ट बी प्राउड ऑफ टेलिंग यू ऑल्सो, आई हैव प्लेड वॉलीबॉल नेशनल लेवल
1: एंड
0: बास्केटबॉल स्टेप डाउन and I was good boxer and cross country runner of the top class in academy,
1: volleyball, boxing or running,
0: or running,
1: kya baat
0: hai, and volleyball national level is something very
1: volleyball.
0: So he was so impressed and he wanted me to go to his regiment only.
1: Achha.
0: And that's why, where is my CO that time who got me selected for ACC, he wanted me that I should join signals. But I got into Rajputana Rifles and I was mighty happy to be with the Rajputana Rifles.
1: तो सर आपको ज्यादा मजा किसमें आया, मतलब आपको लगता है कि Rajputana Rifles ही आपके लिए जो है एक ड्रीम था?
0: देखिए ऐसा मैं बताएं कि आर्मी ज्वाइन करना एज ए मैटर ऑफ प्राइड एंड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर एज ए डबल मैटर ऑफ प्राइड एंड इफ यू गेट इन टू इन्फेंट्री नथिंग लाइक दैट।
1: अच्छा।
0: एंड अमोंग इन्फेंट्री Rajputana Rifles इज अ टॉप।
1: अच्छा।
0: एंड आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ दिस आई गॉट इन टू Rajputana Rifles।
1: क्या बात है सर।
0: यू नो माई एल्डर सन इज ऑल्सो फ्रॉम Rajputana Rifles।
1: यस सर।
0: एंड
1: जी
0: दैट बॉय ऑल्सो बिकॉज Rajputana Rifles इज वन ऑफ द वेरी गुड रेजिमेंट एंड ही इज द वन।
1: जी क्या बात है सर। हम आगे सर आपसे बात करेंगे और हम 62 जैसे आपने बताया हम 71 की बात करेंगे क्योंकि आप वॉर वेटरन रहे 1971 वॉर के, तो हम उस पर भी बात करेंगे और कुछ आपसे इंटरेस्टिंग कहानियां भी जानना चाहेंगे। तो आगे बढ़ेंगे हम और अपने लिसनर से बताना चाहेंगे, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमारे आज के

हमारे खास मेहमान कर्नल कमर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं और 1971 वॉर वेटरन हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं और हमें आप सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आप बने रहे हमारे साथ, यह है देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। आप सुन रहे हैं शाही के साथ।

0: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और आज हमारे हैं खास मेहमान कर्नल कमर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन। सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे इस शो में।
1: वेलकम, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया आज हमारे साथ। आप जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बता रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही अनोखी भी हैं और बहुत ही खुशी देने वाली भी हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आपने बचपन से ही किस तरीके से आपके मन में था कि आपको फौज में भर्ती होना है और आपने किसी की परवाह नहीं की और आपने वो मकाम बनाया जो हर इंसान के लिए, सर मैं समझता हूँ कि आसान नहीं होता, जाहिर है बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, तो वही आपने अपनी लाइफ में वो किया, अपने करियर में आपने जो अचीवमेंट्स हासिल की, वो जो मकाम आपने बनाया, तो इसके बारे में आपके कुछ सर कुछ शब्द मैं चाहूंगा कि आप कहना चाहेंगे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं?
1: आई थिंक ऊपर वाले ने जो दिया है
0: जी,
1: जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे भी बहुत अच्छा मिला है। और जो 71 वॉर के बारे में
0: जी,
1: मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं बड़ा यंग ऑफिसर था एंड आई वाज मेजर रैंक था मेरे पास में
0: जी,
1: आई वाज कमांडिंग वन ऑफ द कंपनी ऑफ 9th बटालियन राजपूत राइफल
0: जी
1: इन पुंछ सेक्टर,
0: पुंछ सेक्टर में
1: जी।
0: तो सर 1971 वॉर वेटरन हैं आप, तो उसके सर हम उस वॉर के बारे में जानना चाहेंगे जिसका आप हिस्सा रहे हैं, तो वो किस तरीके का सर दौर था, वो क्या हालात थे और जब वो जंग थी तो उस पर आपका और जो जो नेशन उस वक्त जो देश पर में चल रहा था उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: देखिए उस समय जो हालात थी
0: जी,
1: मुक्ति वाहिनी वगैरह बहुत पहले से मूवमेंट शुरू हो चुके थे
0: जी
1: ईस्टर्न सेक्टर में, बट नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर पुंछ एरिया स्पेशली उस साइड के अंदर कोई ज्यादा इतनी चहल पहल नहीं थी, लड़ाई की तैयारियां नहीं थी। लेकिन लकली वी हैड ए जनरल ड्यू कमांडर मेजर जनरल कुंदन सिंह
0: जी,
1: ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम राजपूत राइफल्स and he happened to be a one of the outstanding general who retired as MS lieutenant general
0: जी.
1: he was the one who pulled up the complete division and we were prepared for any eventuality or any war type thing
0: जी.
1: at that time
0: ji
1: so he was the one and I was with the bravo company commander
0: Achha.
1: in punch sector where punch is other side of the punch river and जी. we were the other side of the दिस साइड ऑफ द पुंछ रिवर
0: एंड अदर साइड थे
1: हम इस साइड में थे।
0: अच्छा,
1: और पुंछ के थोड़ा सा आगे चलने के बाद में पाकिस्तान बॉर्डर स्टार्ट होता है एंड आई वॉज फेसिंग द पाकिस्तानीज अपोजिट माई पोस्ट अक्रॉस द रिवर पुंछ रिवर,
0: मतलब आमने सामने की
1: आमने सामने थे
0: बिल्कुल,
1: और उनके पास में वहाँ पे आरसीएल गन लगी हुई थी और एमएमजी लगी हुई थी, वो डायरेक्टली हमारे अंडर व्यू थी, दे कुड फायर एट अस एंड वी कुड फायर एट देम।
0: अच्छा, बिल्कुल आमने सामने,
1: आमने सामने फ्रॉम दैट टॉप एंड आई हैड यू नो कंपनी वॉज डिप्लॉयड ऑन 3 पोस्ट।
0: अच्छा,
1: एंड आई वॉज ऑन द मिडिल पोस्ट, फ्रॉम मिडिल पोस्ट जो पहाड़ी का था
0: जी,
1: उससे हम पूरी कंपनी को अपना कंट्रोल करते थे
0: ठीक है,
1: और सामने से फायर वगैरह आते थे। 4 तारीख दिसंबर, 4th of December
0: जी
1: फायरिंग स्टार्ट हो गया, तो फायरिंग स्टार्ट होने के बाद में पूरी रात हम लगभग लड़ाई लड़ते रहे और जो ही फायरिंग स्टार्ट हुआ तो माई एक्शन वॉज कि मैंने पूरे जवानों से मिलकर उनको हौसला बढ़ाना है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली व्हेन द फायरिंग वॉज गोइंग ऑन आई नेवर बॉदर्ड, फर्स्ट आई वेंट टू अदर पहाड़ी अदर जो कि मेरी पिकेट थी
0: जी,
1: ऑलमोस्ट अबाउट 1 किलोमीटर अदर साइड ऑन द अपहिल ऑफ द माउंटेन एंड आई मेट ऑल द पर्सनल एंड जवानों का जवानों का हौसला बढ़ाते बढ़ाते देन आई वेंट टू द अदर पिकेट एंड देन टू माई ओन पिकेट एंड कम्प्लीट नाइट आई वॉज एक्टिव विद दैट
0: ट्रीटिंग द पीपल पूरी रात रही
1: एंड व्हेन आई वेट करते रहे व्हेन आई यू नो वी हैव द कमांड पोस्ट।
0: अच्छा,
1: एंड कमांड पोस्ट इज सॉर्ट ऑफ ए वेरी वेरी सॉलिड बंकर फ्रॉम वेयर यू कुड ऑब्जर्व एंड देन डायरेक्ट द फायरिंग एंड अदर थिंग ऑल्सो एंड कमांड योर कंपनी ऑल्सो।
0: बिल्कुल,
1: सो फ्रॉम द कमांड पोस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग इट वॉज गोइंग टू बी डे लाइट आई गॉट आउट फ्रॉम माई कमांड पोस्ट एंड वॉज गोइंग फॉर ए पी प्लेस
0: जी
1: टॉयलेट
0: जी
1: एंड टॉयलेट वॉज यू नो ऑल टेम्परेरी
0: जी बिल्कुल,
1: तीन से तीन के ना टार्मिक के तीन होते हैं ड्रम, उसको कट करके एक बड़े से पत्थर के साथ में
0: उसको बनाया जाता है,
1: बनाया गया
0: ठीक है
1: टेम्परेरी टाइप
0: जी।
1: सो आई वाज गोइंग टू दैट वन, सो बंकर टू बंकर, और वी हैव द कम्युनिकेशन ट्रेंचेस, कम्युनिकेशन ट्रेंचेस आर द यू नो सॉर्ट ऑफ अबाउट 5.5-6 feet डीप थ्रू विच यू कैन
0: वॉक, उसके बीच में से आपको गुजर के जाना होता है,
1: चल के जाना होता है
0: जी।
1: सो व्हेन आई वाज वॉकिंग टू टॉयलेट एंड देन क्लाइम अप एंड गेट आउट फ्रॉम दैट वन
0: जी,
1: दैट टाइम देर वॉज ए साउंड ऑफ ए आरसीएल फायर।
0: अच्छा,
1: व्हेन द आरसीएल फायर केम तो माई ऑपरेटर वॉज विद मी
0: जी,
1: एंड ही वॉज कमिंग आउट विद मी के मेजर साहब कहाँ जा रहे हैं
0: जी।
1: तो वो मेरे साथ जो ही निकला, उसने सुना कि अब फायर हो गया आरसीएल
0: जी,
1: और इसने मेरा हाथ पकड़ के और पीछे गिरा दिया।
0: अच्छा,
1: और बोला अरे सब मरोगे, एंड इन द मीन टाइम द आरसीएल बम हिट दैट टॉयलेट वॉज, इट वॉज थ्रोन अप इन पीसेज एंड द बिग द रॉक ओवर देयर, इट वॉज ऑल
0: blown up
1: and we were really in danger and it was a good luck of mine
0: kuch seconds thank kahi sirf
1: yes
0: aap matlab wo jo naturally hone wala tha
1: it would have been entirely different thing I would have been pieces not sitting in front of you today
0: bilkul
1: so that was the one then what happened next day early afternoon we got a order that you have to move out to another battalion that is Banwar sector and defend a company of other Chesik which was in danger which was attacked that night.
0: Achha, to next, unki madad
1: next,
0: ki
1: next night they were to be attacked
0: Ji.
1: So that one of the FDL behind that is number the FDLs were numbered at 405-406.
0: Achha.
1: So 406 was in danger, it was encircled by the enemy.
0: Achha.
1: So I was told that your company will go and reinforce that
0: 405
1: picket so that you we could fight back the enemies. So I moved my company before last light to the that side towards Punch. We had to go across the Punch river then Punch township is there pass through that place and the climb of almost about 2000 square square feet I say and the brigade headquarter was at the Punch river.
0: Achha.
1: Punch headquarter the brigade one so there was a Jula bridge which was to be crossed.
0: Achha.
1: Jula bridge on Punch was the one which was a wooden type and you know it was only for two wheelers.
0: Achha. Or paddle
1: chal ke jane ke liye
0: ji.
1: So I was called by the battalion commander for the briefing, so with my two escort and operators we went to the battalion commander and he briefed me that you have to go and do this work. Chesik was the battalion which was deployed that side at 405-406 and you have to go and clear the saddle between Black Rock between these two FDLs.
0: Achha.
1: ठीक है and then join the company which is fighting which is likely to fight this night or next
0: क्योंकि जैसे आपने बताया कि उधर से अटैक हो चुका था और
1: हाँ जी उनको जाके आपने reinforce
0: करना है.
1: So after briefing I had to I got a RCL jeep.
0: अच्छा.
1: I with my escort and all that got into RCL jeep while moving down towards that bridge.
0: अच्छा.
1: The traffic was too much because that time the all convoys loaded with the ammunition all that artillery convoys those were the all lined up on the road and my jeep was not able to get through so I got on my feet with my escort and all that.
0: Achha.
1: And I went around say 3 to 5 kilometers walking. When I reached to the Jula bridge I found my company was stuck over there, they were all in position and firing was going on from both the sides.
0: अच्छा, जिस वक्त आप पहुंचे उस वक्त भी ये सब फायरिंग
1: मेरी जो कंपनी थी वो पुंछ रिवर के इस तरफ झूला ब्रिज के इस तरफ
0: अदर झूले के उस तरफ झूला ब्रिज के तरफ जी
1: पुंछ के परली तरफ से भी फायर आ रहा था और इधर से ये लोग भी फायर कर रहे थे. सो आई हैड टू सबाल्टर्न टू यंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट वार्डने एंड लेफ्टिनेंट मल्होत्रा
0: जी
1: एंड जेसीओ वर देयर. तो कंपनी जेसीओ से मैंने पूछा कि रंजीत साहब फायर क्यों हो रहा है
0: जी.
1: रणजीत साहब ये फायर क्यों हो रहा है?

0: जी।
1: तो उन्होंने बताया सर उधर सामने से फायर आ रहा है। मैं क्या फायर क्यों किया, बोल सर ऐसा है झूला ब्रिज के ऊपर से 3-4 लोग आए थे।
0: अच्छा।
1: और जब वो आने लगे उतर रहे थे तो हमने उनको चैलेंज किया, तो उन्होंने पासवर्ड नहीं दिया और वो भागने लगे। तो भागने लगे तो हमारे जवान ने फायर कर दिया। मैंने बोला तुम्हारे को बताया था ऐसे तो मरकत नहीं करना, वहां जाके कंपनी को पोजीशन दे देना, मैं आके ज्वाइन करूंगा आपको। तुमने फायर क्यों खोला, बोले सर हमने सोचा एनिमी है तो जवानों ने फायर खोल दिया। मैं क्या ऑर्डर किसने दिया, बोले साहब मैंने दिया था। मैं चलो कोई बात नहीं है। देन आई कॉन्टेक्टेड द ब्रिगेड BM।
0: अच्छा।
1: आई सेड माई कंपनी टू क्रॉस झूला ब्रिज एंड गो टू बनवट सेक्टर टू हेल्प आउट सेसिक एंड हु इज फायरिंग फ्रॉम अदर साइड। देर वॉज 80 कंपनी, 80 कंपनी दोज आर यू नो विद द एनिमल्स म्यूज एंड ऑल दैट, दे थॉट के देर इज एनिमी टू अदर साइड एंड दे आर फायरिंग टूवर्ड्स अस एंड वी आर फायरिंग दैट साइड।
0: जी सर, मैं एक चीज यहाँ पर जानना चाहूंगा, जब ये सिचुएशन आप देख रहे थे अपने सामने, तो वो क्या फीलिंग्स होती हैं आप फायरिंग के बीच में जब जा रहे हैं, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और वो वॉर का समय है, तो क्या वो जो सिचुएशन होती है उसको किस तरह से फेस करते हैं?
1: जो फीलिंग होती है, जो फीलिंग होती है
0: जी,
1: वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। हम तो इतने जोश में होते हैं कि कुछ हमको लगता ही नहीं है। हम तो को पता है हम जीतेंगे, हम मारेंगे, हम अपने जो भी हमको ऑब्जेक्टिव मिला है, जो टास्क मिला है उसको पूरा करेंगे। अभी बताता हूँ आगे क्या क्या हुआ। तो BM साहब ने बोला और 80 वाले, मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपना कंपनी को लेके क्रॉस करिए और आप पहुंचिए जल्दी से। सो यू नो क्लाइम वॉज क्वाइट बिग व्हेन द फायरिंग स्टॉप्ड। आई मूव्ड माई कंपनी क्रॉस द झूला ब्रिज देन स्टार्ट क्लाइंबिंग अप। So climbing up all that, to that Malhotra platoon was leading and we come in single line।
0: अच्छा।
1: ट्रैक के ऊपर जैसे पहाड़ों के चढ़ते हैं
0: जी,
1: तो सिंगल लाइन पे जा रहे थे।
0: Everybody
1: was tired and it was going to be early morning।
0: अच्छा।
1: But before first light I was to
0: तो
1: reach,
0: पूरी रात को आपको चढ़ाई चढ़नी थी।
1: हाँ, before first light I was to do the operation also। That was my task।
0: ऑपरेशन भी अपना शुरू कर
1: कंप्लीट करना था।
0: बिल्कुल।
1: सो व्हेन वी आर नियरिंग दैट ऑब्जेक्टिव बिफोर 405
0: जी,
1: द 405 वाज द हेडक्वार्टर ऑफ चेसिक एंड द CO वाज देयर। कंट्रोल करते हैं, तो मेरे को उनको जाके ब्रीफिंग लेना था। उनसे ब्रीफिंग लेने के बाद मेरे को ऑपरेशन करना था। सो टाइम वॉज रनिंग शॉर्ट, तो व्हेन आई फाउंड के आगे से वो बैठ गए सारे
0: जी,
1: तो मैंने जाके जवानों से पूछा क्या हुआ। मुल साहब मल्होत्रा साहब आगे बैठ गए। आई कॉट ऑल ऑफ मल्होत्रा फ्रॉम हिज नेक एंड आई टोल्ड हिम व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाई यू स्टॉप्ड। बोले सर टायर्ड। मैं कहा यू गेट बैक एंड आई वॉज द वन टू लीड द कंपनी रीच टू द 405 FDL
0: जी,
1: एंड आई मेट द CO। CO ब्रीफ्ड मी। आई रिक्वेस्टेड CO के सर गिव मी टू स्कॉट दोज यू कैन टेल मी के फ्रॉम वेयर द फायर इज कमिंग
0: जी,
1: सो दैट माई जवान्स कैन अटैक दैट वन एंड आई डोंट सफर कैजुअलिटीज
0: जी।
1: सो वेन ही टोल्ड मी दैट ओके मेजर स्वाइन इज द कंपनी कमांडर एंड यू टेक टू जॉन्स फ्रॉम हिम, दे विल टेल यू के फ्रॉम वेयर द फायर इज कमिंग। सो वेन आई वेंट टू हिम, मेजर स्वाइन सेट नो आई एम ऑलरेडी अंडर अटैक एंड आई विल नॉट बी एबल टू गिव एनी थिंग। सो आई वॉक बैक टू कमांडिंग ऑफिसर
0: जी
1: ऑफ चेसिक and I said sir your company commander is not giving me escort. Then he said ke the task is given to you, make a well colonel so and so you are talking to the company commander of 9th battalion Bravo company and I'll see that my task is completed before the first light and I'm going. So his adjutant came running with me.
0: Achha.
1: And he asked that Major Swain to give me escort and I put up an attack sort of thing I should say
0: जी.
1: के we had to go down we had to go down in the what do you call Vedi
0: Achha.
1: And climb up again and then there was a black rock. From there the MMG and LMG of Pakistani they were firing. There were number of mules, those were killed and one of the casualty was there. Other people were also injured in that valley.
0: जी.
1: But before the first light, I was able to climb up and that the enemy

0: left his that location,
1: अच्छा,
0: leaving some nomination in one of the they ran away from there
1: जी.
0: and I joined Major Punjab and Major Padda over there and there were 36 Pakistani those were killed by that company that night itself. So next morning we picked up all those dead bodies of them. I had breakfast, a hot breakfast with the Major Punjab and all.
1: Achha.
0: And then next task was given to me to go to help out other company because I was one of the outstanding company commander and outstanding company in the complete division
1: Ji.
0: With my young Jose and all that. And I had stood first in one of the competition which was conducted at the DIV level at the DIV headquarter at Rajouri. And Achha. The DIV commander himself has given this praise of mine that Bravo Company Commander Major K.S. Kamar Bhardwaj is one of the outstanding officer in this competition training we had in the DIV Battle School.
1: जी
0: सो दैट वाज द रेपुटेशन ऑफ दैट थिंग.
1: बिल्कुल सर, आपकी आपकी वो जोश और जज्बे से भरा हुआ वो जो मोमेंट रहा उसमें आपने इतना बड़ा उसमें जो है कंट्रीब्यूशन दिया, रोल प्ले किया, तो वो वाकई यादगार है. और जैसे कि आपने बताया कि वो आपकी यादों में जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए और वो आपके कहीं ना कहीं मस्तिष्क में हमेशा के लिए वो जुड़ा हुआ है.
0: अभी आप बात कर रहे हैं अभी वैसा जोश आ रहा है,
1: जोश
0: अभी भी मैं उसी लड़ाई उसी पहाड़ और उसी ब्लैक रॉक जिसको मैंने जाके कैप्चर किया और वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि सामने अभी से मैं फिर से जवान हो जाऊं.
1: आप उन यादों में पहुंच गए और मैं आपके साथ उन यादों के साथ ही वहां पर पहुंच गया आपकी बातों में. मुझे महसूस हो रहा था कि मैं वहीं आपके साथ पीछे पीछे चल रहा हूं आपकी बातों में और आपकी यादों में जहां आप वॉर फ्रंट पर थे और आप दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे.
0: वेरी नाइस टू टॉक ऑन दैट लाइन
1: जी. और सर इसके बाद भी हम आगे आपसे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि हम और भी चीजें आपसे जानें. जैसे आपने 1971 वॉर की आपने जो इंसिडेंट बताए यादगार कुछ लम्हे आपने शेयर किया हमारे साथ. सर आर्मी सोल्जर्स

0: my own without any sipares or without any recommendation or bribe or anything. I was the one. To do all these things.
1: बिल्कुल आपने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरुआत की और आपने जो अचीवमेंट हासिल करी वो आपकी अपनी अर्न की हुई है, अपनी मेहनत से आपने वो जो एक मकाम हासिल किया.
0: You will be proud to tell you that मैंने जब बटालियन में कदम रखा
1: जी
0: तो अपने आप को बटालियन में किसी जवान से कम नहीं समझा. मेरे फिजिकल में इतना दम था कि जवान भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, ऑफिसर की तो बात ही छोड़ दी.
1: क्या बात है सर.
0: और मैंने जब बटालियन जामनगर आ गई तो उस समय मैंने बटालियन में बॉक्सिंग टीम रेज की, वॉलीबॉल टीम रेज की और वो वॉलीबॉल नेशनल लेवल के प्लेयर बनाए और जो बॉक्सर सेलेक्ट किए थे उसमें फर्स्ट टाइम 4 बॉक्सर कमांड लेवल तक बॉक्सिंग किया. एंड माई क्रॉस कंट्री रनिंग और दे लॉट ऑफ अदर कंपटीशन आई यूज टू कैरी इवन द हैवी लोड ऑफ आरसीएल और
1: आरसीएल सर बहुत भारी
0: उसको कैरी करना पड़ता है. एमएमजी कैरी करनी पड़ती है, 3 पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं.
1: अच्छा, उसको
0: तो उसको लेकर के हमको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो ऐसे लंबी दौड़े लगानी पड़ती है.
1: अच्छा,
0: सो आई यूज टू बी लीडिंग अमंग द जवान्स ऑल्सो विद ऑल दोट एंड माई सीओ एंड माई टू आई सी एंड माई बटालियन यूज टू कॉल मी रनिंग हॉर्स. And mind you, that time I was also married and father of one daughter then.
1: जी.
0: Then son was also born there only, Jamnagar.
1: क्या बात है सर.
0: Colonel. And after that I had gone to the war.
1: जी. Colonel कमर भारद्वाज की बात सुनकर के हम भी जोश से पूरी तरीके से भर गए हैं और यहाँ पर मैं जरूर कर्नल कमर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं, 1971 वॉर वेटरन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं संदेश टू सोल्जर्स में, उनको सर मैं आपको ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ जो आपकी पसंद से मैंने गाया था. ब्यूटीफुल ट्रैक. घर से निकलते ही आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर शाहिद के साथ. आप हमें संदेश टू सोल्जर्स में कर्नल कंवर भारद्वाज से आप बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर. और जो मैसेजेस सर आ चुके हैं मैं उनको आपको पढ़कर सुनाऊंगा इस गाने के बाद.

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और आज के हमारे खास मेहमान आज के शो में कर्नल कमर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित वॉर वेटरन हमारे साथ आज मौजूद हैं। और हम उनकी कहानी सुनकर के खुद भी जोश से अपने आप को भरपूर महसूस कर रहे हैं। सर, यहां पर मैं आपसे जो भी अभी अब तक मैंने बात की, आपके बारे में बात की, लेकिन सर एक ऐसी एक शहीद की बात भी मैं यहां पर करना चाहूंगा जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, जान की आहुति दी, और वो थे कैप्टन उमंग भारद्वाज, आपके सुपुत्र, जिनको उनके साथी प्यार से टाइगर बुलाया करते थे। तीन सक्सेसफुल ऑपरेशंस उन्होंने किए, जिन तीन ऑपरेशंस में उन्होंने 15 ड्रेडेड टेररिस्ट को मार गिराया था। उसके बाद चौथा ऑपरेशन था, वो एम्बुश था 18 और 19 नवंबर 2002 की मिडल नाइट में। उस दौरान सर 6 टेररिस्ट मार गिराए गए, जिनमें से 2 को अकेले उमंग भारद्वाज ने ही मौत के घाट उतारा। और सर उसी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बलिदान दिया, शहीद हुए वो, और उनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी नवाजा गया था। सर वो मोमेंट था, एक प्राउड मोमेंट भी था, लेकिन बहुत ही यंग एज थी उनकी जब उन्होंने शहादत पाई और टेररिस्ट का मुकाबला करते हुए उनको मार गिराया और अपनी भी जान की आहुति दी देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे याद करते हैं आप?
1: ओह माय गॉड, कैसे याद करते हैं। जैसे उसका नाम था ना उमंग
0: जी,
1: ही वाज ऑलवेज ए लाइव वायर, आई टेल यू, हे मेरे लाइफ का वो इतना चाहता बेटा था
0: जी।
1: ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड, ही वाज माय बेस्ट गाइड, ही वाज माय बेस्ट फादर, एडवाइजर, व्हाट सो यू कॉल, बिकॉज इट हैपन्ड सो कि वो बड़े भाई से 7 साल छोटा था।
0: अच्छा।
1: जो उस समय मेजर थे और एनएसजी में इंस्ट्रक्टर थे, मेजर राजेश भारद्वाज
0: जी,
1: और सबसे बड़ी सिस्टर जो है उनकी वो डॉक्टर सविता है।
0: अच्छा।
1: सो उमंग वाज फुल ऑफ जोश ऑल द टाइम एंड वी नेवर वांटेड टू सेंड हिम टू आर्मी, बट ही गॉट सिलेक्टेड in return and then he was to go for SSB. That time also myself और मेरी और उसकी मम्मी शिक्षा भारद्वाज ने काफी कोशिश की कि हम इसको नहीं भेजें, बट उसने हमारे को परस्यू करके और उस लाइन पे ले आए कि नहीं, मेरे को फौज में जाना है और मैं पहले जाता हूँ, SSB में अभी हम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, देखते हैं कितना दम है हमारे अंदर। तो वहाँ SSB में गया एंड ही गॉट सिलेक्टेड बिकॉज पहले तो बोला था मैं ठीक है 5 साल के लेगा, जब जाएंगे तो शॉर्ट सर्विस में चले जाएंगे, एंड ही गॉट इन मेरिट एंड ही गॉट रेगुलर
0: जी
1: टू ज्वाइन CSD IMA ज्वाइन करके।
0: अच्छा।
1: तो कमांड डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन क्लियर करके
0: जी,
1: और SSB वगैरह क्लियर करके IMA से पास आउट हो गया। दैट टाइम आई ट्राई टू गेट हिम इन ASC or AOC.
0: Achha.
1: So that time I went to army headquarters, one of the officer over there with my friend, I had gone to him and I said ki bhai beta pass ho raha hai, to major Hudda was there.
0: Ji.
1: He said ki sir उसको हम आर्मर्ड कोर तो और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री नहीं दे पाएंगे, राजदेव दे देते हैं। आई टोल्ड हिम, मैं कह रहा वो मेरे पे एहसान नहीं कर रहे आप,
0: बिल्कुल
1: ठीक है। तो उसको मैं क्या, हमने राजीव नहीं चाहिए उसको, तो राजीव तो उसका बाप है, उसका भाई है, तो उसका पेरेंटल हक है, वो तो मिलेगा, बट वी वांट हिम टू गो टू नेवी, व्हाट यू कॉल ASC और AOC, बिकॉज दैट टाइम देयर वाज सम हिच इन माय माइंड एंड माय वाइफ माइंड कि इसको कहीं खतरा है, पता नहीं क्यों ऐसा ही पहले लग रहा था।
0: लेकिन

0: सर उस उनमें उमंग में आपका वाला ही वो जोश था, अपने पिताजी का वो जोश और जज्बा, इसीलिए उनके साथ उनको टाइगर कहकर पुकारते थे।
1: आई एम कमिंग टू दैट वन। तो उसको व्हेन ही पास्ड आउट एंड व्हेन ही केम टू नो कि ये मेरे को एसी मिली है
0: जी,
1: तो मैंने उसको वो फोन पे बड़ी मुश्किल से बातचीत किया एंड ही वाज क्राइंग ऑन फोन कि डैड मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया, व्हाई यू गॉट मी इन एसी। आई सेड बेटे आपको 3 साल मिलेंगे अटैचमेंट के लिए, उसमें आप हमारी राजरीफ मेरी पलटन के साथ या भैया की पलटन के साथ में आप अटैचमेंट पे आना, अगर आपको राजरीफ ही चाहिए तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, अदरवाइज मैं क्या राजरीफ अगर मिल जाती है या इन्फेंट्री मिल जाती है उससे बाहर निकलना मुश्किल होगा, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट फ्रॉम देयर एंड वी वॉन्ट टू यू जज अबाउट यूर सेल्फ
0: जी।
1: ही सेड नथिंग डूइंग एंड मेरे ऊपर कोई मेहरबानी मत करना भी, जहां मेरी पोस्टिंग आती है मेरे को जाने दीजिए।
0: अच्छा,
1: ही ज्वाइंट 7 जाट एंड 7 जाट के अंदर गया
0: जी,
1: तो ही वॉज पोस्टेड इन महेंडर सेक्टर एंड नाउ कमिंग टू द ऑपरेशंस। ही वॉज सच ए जॉली फेलो एंड फुल ऑफ जोश ऑल द टाइम। ही कंडक्टेड 3 ऑपरेशन विच यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, और 3 ऑपरेशन के अंदर उसने 5 मार दिए थे। इसमें एक इंसिडेंट और बताऊंगा, एक डी के साह उसी कोर्समेट, ही वॉज ऑल्सो विद द 7 जाट एंड देयर इज ए घातक प्लाटून
0: जी जी।
1: तो दिस बॉय उमंग वॉज डूइंग घातक प्लाटून कमांडर फॉर 1 ईयर एंड ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन ही हैज किल्ड 15 टेररिस्ट
0: जी
1: एंड दीज 4 ऑफिसर दोज हैज जॉइंट टुगेदर 7 जाट दे हैड टेकन ए सॉर्ट ऑफ प्लेज दैट जब तक हमारी पलटन यहाँ है और हम यहाँ पर हैं कोई टेररिस्ट हमारे एरिया से
0: जिंदा नहीं जा सकेगा
1: अंदर घुस नहीं सकेगा
0: एंड
1: दैट ही डिड। कैप्टन डी के झा सेक्रीफाइस्ड अबाउट 2.5 मंथ्स अर्लियर देन दैट इन दैट सेम एरिया एंड उमंग वॉज डूइंग एडजुटेंट। उमंग टोल्ड मी इन द नाइट अराउंड मिड नाइट, ही टोल्ड मी दैट डैड डी के इज नो मोर। आई से व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, बोलते हुए तो छोड़ो मेरे से ऊपर क्या गुजर रही है, वट उसके ब्रदर है दिल्ली के अंदर एंड हिज बॉडी विल बी कमिंग टू एयरपोर्ट एंड उसके ब्रदर को आपके उसके साथ भेजना पटना एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 आई विल कॉल यू एंड गिव मी रिपोर्ट। दैट वॉज अ सॉर्ट ऑफ ऑर्डर फॉर माई यंगर सन एंड द ब्रेव बॉय एंड नेक्स्ट आई डिड ऑल द थिंग्स बिकॉज ही टोल्ड मी कि उसके पास पैसा नहीं होगा, उसकी टिकट वगैरह कर दीजिए और डेड बॉडी के साथ वो उधर से लेके जाएंगे उसे। सो दैट वॉज डन। देन उमंग का जो बताया ऑपरेशन
0: जी,
1: ही वॉज डूइंग एडजुटेंट फॉर 2 ईयर्स। ही वॉज पोस्टेड आउट, पोस्टिंग आ चुका था। ही केम ऑन 10 डेज लीव एंड 10 डेज लीव के वापस जब वापस गया सो ही रीच देयर ऑन द 17th evening
0: जी,
1: रादर 18th evening
0: जी, 18th और 19th evening
1: ही रीच देयर
0: जी
1: एंड ही वॉज देयर टू हैव हिज फेयरवेल पार्टीज एंड ऑल दैट एंड पिकअप ए ट्रॉफी एंड गेट आउट फ्रॉम द बटालियन डूइंग गुड जॉब। दैट टाइम there was some information on news and all that there are some terrorists those who are crossing the border, so he went to the CO and requested him that I want to go for the operation. So CO told him no, you send somebody, you will not go, you are already posted out and you have to go, that is enough for you. So this boy insisted on him and the third time he got ready, took some people with him and went for the operation himself. Then CO warned him that go up to so-and-so location and conduct the operation. Take care. Apna dhyan rakho. But this boy, full of juice, and when he went with the ambush party as the ambush commander, he put the ambush over there and allowed the 6 terrorists to get into the ambush and then he opened the fire. First terrorist was killed by his fire, then other person engaged the ambush terrorist. One terrorist was running back towards the dhara, one of the dhara is the kanda type of makan
0: in
1: the pahadon mein jinme dangar wangar bandhte hain, to usme wo shelter lene ke liye bhag raha tha. Umang ran parallel to him and shot at him also. Umang also got a shot from साइड फ्रॉम दिस फेलो और एनी टेररिस्ट, दोज हु आर स्टिल अलाइव,
0: आमने सामने की

0: लड़ाई थी उस टाइम के साथ
1: फ्रॉम 6 मीटर इटसेल्फ
0: अच्छा
1: Each other shouted at each other, and he said, "Kafir and all that." He said, "Bloody fool, I'll kill you!" And he shot him down over there. And he told his operator, "Ke Ramkishan apne CEO saab ko bolo, maine apna kaam pura kar diya hai. Jawan ko fire jari rakhe, koi bachke nahi jana chahiye. Aur mere shayad kahin lag gayi hai." By that time, the operator approached him. Umang was no more.
0: Acha. So. तो उस मोमेंट पर उमंग भारद्वाज ने शहादत पाई उस ऑपरेशन के दौरान
1: जी
0: 6 टेररिस्ट जो मारे गए
1: जिसमें 15 पहले मार चुके थे 6 टेररिस्ट
0: जी तो आज हम शौर्य चक्र से सम्मानित मरणोपरांत कैप्टन उमंग भारद्वाज को याद करते हैं उनकी बहादुरी इनकी वीरता उनके शौर्य के लिए अदम्य साहस के लिए सर हम यहां पर समय बहुत कम बचा है मैं चाहूंगा कि जो मैसेजेस हमारे पास बहुत समय से आ गए थे उनको मैं आपको पढ़ करके बताऊं
1: जी
0: गुड आफ्टरनून का मैसेज है हितेंद्र दास का असम से आपके लिए और उसके बाद ये मैसेज है गुड आफ्टरनून टू कर्नल रेस्पेक्टेड सर एंड आरजे सर आई एम राइटिंग फ्यू वर्ड्स टू आर इंडियन आर्मी आई बो माय हेड विद इमेंस रेस्पेक्ट एंड प्राइड फॉर आवर बिलव्ड इंडियन आर्मी यू प्रोटेक्टेड आवर बॉर्डर्स विद अनवेवरिंग करेज यू सर्व द नेशन विद सेल्फलेस डेडिकेशन एंड यू इंस्पायर एवरी इंडियन विद योर सैक्रीफाइसेस बिकॉज ऑफ यू वी लिव इन फ्रीडम एंड पीस सो एंटायर नेशन इज फॉर एवर इंडेप्टेड टू यू इंडियन आर्मी जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय यह है सर शंकर लोथ फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से
1: थैंक यू वेरी मच
0: और आर्मी ऑफिसर को और आरजे सर को नमस्कार जय हिंद जय भारत यशवंत आडमुटे धाराशिव हैं सर ये महाराष्ट्र से आपको भी बहुत बहुत नमस्कार भारद्वाज साहब से मिलने में बहुत खुशी है जी वेलकम टू द शो श्रीकांत हैं सर ये टोलगेट त्रिची तमिलनाडु से चरण कुमार हैं सर ये सन ऑफ श्री ब्रिजेश कुमार विलेज बरकतपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर स्टेट यूपी से और कर्नल भारद्वाज जी को मेरी ओर से जय हिंद जय भारत ये कह रहे हैं आपको सर
1: हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत सबको हमारे साथियों को सबको आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारक
0: जी और सर हैं ये शांतचारा बादीगार कोकानूर हरिहार से देवनागरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका रिस्पेक्टेड सर संदेश टू सोल्जर इज अ वेरी मीनिंगफुल एंड हार्ट टचिंग प्रोग्राम यू प्रेजेंट ब्यूटीफुली रिमाइंडिंग अस ऑफ द सैक्रिफाइसेस सर्विसेज करेज एंड पैट्रियटिज्म ऑफ ब्रेव सोल्जर्स हु प्रोटेक्ट अवर नेशन डे एंड नाइट एट द बॉर्डर्स सोल्जर्स स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्रीमैन देयर डेडिकेशन एंड सेल्फलेस सर्विसेज आर ट्रूली कमेंडेबल सर ये कह रहे हैं हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू फॉर ब्रिंग सच अ मीनिंगफुल प्रोग्राम टू अस थैंक यू सो मच आपने हमें सुना और आपने हमें मैसेज किया और हैं सर ये कर्नल कमर भारद्वाज जी जय हिंद 71 आमने सामने के वार का विवरण सुनकर मन उत्साह से भर गया है कमर जी का आज भी वही जज्बा महसूस हो रहा है सर आपकी बात सुनकर के ये कह रहे हैं
1: थैंक यू सो मच
0: जी और नाम शुभ संध्या इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है शायद राजेश भल्ला एडवोकेट कंकर खेड़ा मेरठ से हैं ये और ये है मैसेज नमस्कार मेरठ से वीरू बख्शी आपके टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी मेहनत करी आपने बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना जय भारत माता की जय वंदे मातरम और भी सर बहुत सारे मैसेजेस हैं और समय बहुत कम हमारे पास बचा है
1: ये अभी कुछ एक बार पूछ लो और ना
0: जी सर अब हम मैसेजेस बहुत सारे मैं सब नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि समय है बहुत कम हमारे पास मैं सर बस चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आपकी और आपके जो फैमिली है उसका किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा अब आप किन चीजों में इन्वॉल्व हैं सर रिटायरमेंट के बाद
1: इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद में हमने एक स्कूल खोला था
0: जी
1: बाय द नेम ऑफ कर्नल पब्लिक स्कूल माना हुआ पब्लिक स्कूल है
0: जी
1: CBSE 10+2
0: जी
1: एंड आवर वॉलीबॉल टीम हैव बीन अंडर 19 अंडर 17
0: जी
1: नॉट ओनली नेशनल चैंपियन इंटरनेशनल चैंपियन
0: जी
1: एंड आई हैड ए हॉस्टल आल्सो इन द स्कूल इटसेल्फ फॉर द बॉयज
0: आज सब आप सोशल सर्विसेज में भी जुड़े हुए हैं आप लोगों की मदद करते हैं और आप जो लोग होते हैं जिनको मदद चाहिए सोशल सर्विसेज में आप भी और आपका परिवार भी इसमें
1: सोशल सर्विस के उमंग के जाने के बाद में
0: जी
1: हमने अपना ध्यान लगाया सोशल सर्विस एंड अदर थिंग्स के अंदर जिसके अंदर के
0: जी
1: वन रैंक वन पेंशन ये हमारा पूरा फाइट था और आज हमारे पुराने फौजियों को, खास करके वार विडोज एंड विडोज को जो फायदा मिला है और हम सबको, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: और सर उसमें आपने पूरी मेहनत की,
1: उसमें सारा जो प्रोटेस्ट था बहुत, आई वाज लीडिंग वन एंड ऑल द प्रोटेस्ट वाज मी माय वाइफ एंड मिस जाखड़ एंड हिज वाइफ। एंड दूसरा एक मैंने बहुत बड़ा ये टोल का यहाँ पे होता था बिटवीन दिल्ली एंड गुड़गांव एमबीएस मॉल के पास में, जहाँ दो दो ढाई ढाई घंटे ट्रैफिक जैम होता था और इवन एम्बुलेंस और प्रेग्नेंट वुमेन वर नॉट एबल टू गेट थ्रू, एंड इन दैट वी आई वाज एबल टू गेट इट रिमूव्ड परमानेंटली फ्रॉम दैट।
0: आपने ये सब काम किए और बिकॉज ऑफ, अभी आप आगे रहते हैं कुछ ना कुछ,
1: बिकॉज ऑफ मोटिवेशन ऑफ उमंग एंड माई सेल्फ is fully I mean involved in all the thing and devoted to whatsoever maximum I can do I must do till I am able to do something।
0: बिल्कुल सर, बहुत ही जोश भरी आपसे हमने बातें की आज और हमने याद भी किया कैप्टन उमंग भारद्वाज को भी, जिनको शौर्य चक्र से नवाजा गया मरणोपरांत उनकी बहादुरी के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए, कर्नल कमर भारद्वाज सेना मेडल सम्मानित 1971 वॉर वेटरन। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे,
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय,
0: भारत माता की जय। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, आपने हमें अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे। और 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो पर प्रोग्राम जारी रहेंगे, आगे है सैटेलाइट्स, मीना के साथ शायकू दें इजाजत।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: नमस्कार।

हाँ जी, इसी गाने के साथ हाजिर हो गई है शर्मीन लव यू जिंदगी, ये प्रोग्राम लेकर आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। शर्मीन संग शामिल अगर हो गए हैं तो हाजिरी लगाइएगा 8657661071, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जी। और लव यू जिंदगी में हम ऐसे ही गाने आज प्ले करने वाले हैं क्योंकि नवरात्र फेस्टिवल चल रहा है, आपको उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये गाना आपने सुना रामलीला, इस फिल्म से श्रेया घोषाल, उस्मान मीर की आवाजें थी, सिद्धार्थ करीमा ने इसको लिखा, संजय लीला भंसाली की कॉम्पोजिशन थी। और जी, क्या आपकी भी कोई ऐसी फेवरेट जगह है जहां आप बिना सोचे समझे पहुंच जाते हैं? कोई कैफे, फेवरेट बेकरी, या फिर वो छोटी सी दुकान जहां जाते ही सामने वाला जो दुकानदार होता है बिल्कुल आप सिर्फ मतलब पूछ ही लेता है कि आज भी वही आपने सेम चीज लेनी है या सेम कॉफी लेनी है, इतना तो आपको वो जान रहा होता है ना। और ऐसे अच्छा भी लगता है कि जब कोई जगह जो है आपकी रेगुलर जाने की हो, जहां जाकर आपको लगे कि हाँ ये तो अपनी ही जगह है। तो आज लव यू जिंदगी में बात करेंगे द जॉय ऑफ बींग रेगुलर समवेयर की, कि किसी जगह पे रेगुलरली जाना, फिर वहां के लोगों से जो है वो पहचान हो जाना, है ना, ये जो फीलिंग है ना, और ये लाइफ में किस तरह की खुशियां लेकर आती है, इसे सबकी बात करेंगे। मीनवाइल अगर आपकी भी कोई ऐसी जगह है जहां आप बहुत ही रेगुलरली जाते हो, जहां के लोग आपको पहचानते हैं, जहां किसी दुकान में जो है आपको बताना नहीं पड़ता, या किसी शॉप में जो है किसी कैफे में आपको बताना नहीं पड़ता कि आपको किस तरह की कॉफी चाहिए, आप बस आते हैं और फिर वो शॉपकीपर बस समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा आपके साथ भी कुछ हुआ है, ऐसी कोई जगह है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा अपने नाम के साथ 8657661071। और आए एक और गाना हो जाए ढोली तारो, क्योंकि क्यों ना, है ना, जब फेस्टिवल चल रहा है, हर जगह खुशियों का माहौल है, तो हमारी प्लेलिस्ट में क्यों ना हो। हम दिल दे चुके सनम से आएगा ये गाना, कविता कृष्णमूर्ति गाएंगी, विनोद राठौर, कृष्णा सगाथिया मिलके गाएंगे इसे, महबूब ने इसे लिखा। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

एक छोटी सी रिश्वत क्या सच में इतनी छोटी होती है? नहीं, रिश्वत सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं बल्कि ईमानदारी और व्यवस्था पर चोट है। याद रखिए, न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे। अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो चुप मत रहिए। संबंधित सतर्कता या भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी को इसकी सूचना दीजिए। सतर्क रहें, ईमानदार रहें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

क्या बात है, देव नेगी यो यो हनी सिंह की आवाजें थी। शबीर अहमद यो यो हनी सिंह, होमी दिल्ली वाला ने इसको लिखा, तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन। लव रात्रि से सुना आपने ये गाना। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। लव यू जिंदगी में हम बात कर रहे हैं द जॉय ऑफ बीइंग अ रेगुलर समवेयर, कि कहीं कोई शॉप या किसी ऐसी जगह आपका रेगुलरली जाना होता है और फिर वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ का जो स्टाफ होता है, वो आपको पहचानने लगता है ना। या फिर कोई पार्क हो गया जहाँ पे आप रोज जाते हैं, वहाँ आपने फ्रेंड्स बना लिए हैं। इस तरह का मैंने भी आपसे पूछा है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ आप रेगुलरली जाते हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। देखें, कभी ना आपने नोटिस किया होगा कि हम किसी जगह पर सिर्फ वहाँ की कॉफ़ी, फूड या शॉपिंग के लिए नहीं जाते, बल्कि वहाँ के लोगों की वजह से भी हम जाना पसंद करते हैं। वो फेमिलियर फेसेस, छोटी छोटी कन्वर्सेशंस और बिना किसी फॉर्मेलिटी के मिलने वाला वो जो अपनापन है ना, वो इंसान चाह रहा होता है। ये पूरे दिन में इतना सब बिजी चल रहे होते हैं, तो वो कुछ पल होते हैं जब आपका वैसे तो उनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप रेगुलरली उस प्लेस पे जाते हो, तो आपने जो है वो कुछ बहुत ही प्यारे से कनेक्शंस बना लिए हैं। तो हमें आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, उसमें से कई तो यही कह रहे हैं, इतने तो प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं आपके। वैद्य ही, फिर हमें यश शिंदे भी कह रहे हैं कि इनका जो रेगुलर प्लेस है जाने का वो FM रेनबो है। आए हाय हाय, क्या बात है। हम बहुत खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि आप लोगों को ये जगह, ये FM रेनबो जो है वो इतना ज़्यादा अपना लगता है, तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको अच्छे अच्छे गाने सुनाएं, है ना। तो आए ये फेस्टिवल के मूड को बरकरार रखते हैं और आपको सुनाते हैं रईस, इस फिल्म से ये गाना। सुखविंदर सिंह, भूमि त्रिवेदी, कृष्णा सगातिया मिलके गाएंगे, कृष्ण सगातिया मिलके गाएंगे ये गाना। जावेद अख्तर साहब ने इसको लिखा, राम संपत की कॉम्पोजिशन।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों?
2: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

बिल्कुल म्यूजिकली योर्स, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप. और इस इवनिंग लव यू जिंदगी में हम बात कर रहे हैं कि किसी ऐसी जगह की जहां यू नो आप रेगुलर जाते हैं और उस जगह रेगुलर जाने का जो जॉय है, जो खुशी है, उसकी बात कर रहे हैं हम कि किस तरह से जिंदगी को लव यू कहने का मन करता है. कुछ ऐसे फेसेस जो कुछ तो न्यू तो हमारे कुछ लगते नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो सेम जगह पे वो भी रोज आते हैं, आप भी रोज जाते हैं, या फिर वहां के किसी शॉप के शॉपकीपर हो गए, वो आपको पहचानते हैं. देखिए, और इस

में मजेदार बात तो ये है कि कभी कभी हमारी फेवरेट जगह पर हमारी चॉइस भी हमको याद रखनी की जरूरत नहीं होती है ना. जैसे कि मैंने कहा आपके ऑर्डर से पहले ही वो जो भी रहेगा वहां पे इंसान वो हमेशा आपको देखता है, आपकी चॉइस उसको पता है, आप किस तरह की कॉफी या चाय लेना पसंद करते हैं उसको पता है, तो वो लाके आप बैठ गए वो लाके रख देता है. उसमें अपने आप ही एक खुशी होती है कि हाय ये तो मेरी चॉइस को जानता है. लेकिन आप भी मुझे बताइएगा कि किसी ऐसी जगह के आप भी कोई रेगुलर कस्टमर हैं, या कोई शॉप की बात नहीं, कहीं कोई किसी घूमने वाली जगह पर भी अक्सर ऐसे मिलते हैं, आप रोज जॉगिंग को जा रहे होते हैं कहीं जो लोग हैं वो आपको वहां पे भी मिल जाते हैं, तो ऐसे आपको भी इस तरह से जो है रेगुलरली कहीं जाने पर कुछ कनेक्शंस बन गए हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा. 8657661071 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. हमें इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आप लोग भेज रहे हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि सभी के मैसेजेस जो हैं वो मैं रीड कर पाऊं. और एक मैसेज आया है, मुझे कहते हैं कि मैं बैंक में रेगुलर जाता हूं, बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है तो वहां का जो स्टाफ है ना वो मुझे बड़ा पहचानता है. और हमें ये मैसेज किया है प्रशिक बोरकर ने, और कितनी प्यारी बात है ना. अक्सर देखिए ना ये इस तरह के जो ऑफिसेस भी होते हैं है ना वहाँ पे, स्पेशली बैंक ले लें, बैंक में तो इतने सारे काम होते हैं, अब तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह वो सब काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, लेकिन यही मैसेज हमें बताता है देखिए ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन है ना, जाकर किसी प्लेस पे जाकर अपनी काम करना, सारे काम करवाना, और वहाँ पे जिस तरह से लोगों से आपकी पहचान होती है, वो मुस्कुराते हुए चेहरे देखना, वो ये सारे ऑनलाइन में ये आपको नहीं मिल पाएगा है ना. खैर टाइम तो बचता है, बिल्कुल टाइम बचता है, लेकिन कभी कभार जो है वो इस तरह से बैंक में विजिट करना भी अच्छी बात है ना. फोटोकॉपीज लगती हैं ऐसी जगहों पर, तो आए आपको फोटोकॉपी सुनाते हैं. और आज हम नवरात्रि स्पेशल कर रहे हैं, सो हमारी प्लेलिस्ट पूरी ही जो है वो ऐसी ही है कि जिस पे आप डांस कर सकते हैं, डांडिया जो है आप डांस कर सकते हैं, डांडिया खेल सकते हैं. हिमेश रेशमिया कीर्ति सगातिया पलक मुछल की आवाजें हैं, कौसर मुनीर ने इसको लिखा, साजिद वाजिद की कॉम्पोजिशन, जय हो से आ रहा है ये गाना.

0: देखें, हम नवरात्रि स्पेशल, हमारी जब प्लेलिस्ट हो और हम फाल्गुनी पाठक का कोई गाना न प्ले करें, ऐसे कैसे हो सकता है ना? आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। और जी, आज लव यू जिंदगी में हम बात कर रहे हैं ऐसे प्लेसेस के जहाँ पे हम रेगुलरली जाते हैं और वहाँ पे कुछ बहुत ही प्यारे रिश्ते हम बनाते हैं। और वहाँ अगर मतलब कोई शॉप में जा रहे हैं या किसी कैफे में जा रहे हैं, तो वहाँ की स्टाफ को पता होता है कि आपको किस तरह की चाय या कॉफी पसंद होती है ना? वो आपके बिना बोले ही जो है वो पहले से ही ला के रख देते हैं, और वो खुशी अलग होती है। वक्त के साथ साथ कुछ फेवरेट जगहें जो है वो छूट भी जाती हैं, कुछ नई जुड़ भी जाती हैं, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं ना जहाँ सालों बाद भी जाएं तो पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो ही जाती है। मैंने आपसे पूछा है, क्या आपकी भी कोई ऐसी जगह है जहाँ आप बहुत वक्त के बाद जाना चाहोगे, है ना? ऐसे प्लेसेस जहाँ पे आप पहले तो अक्सर जाते थे लेकिन अब वो छूट गई हैं, ऐसे भी बताइएगा मुझको जगह। मैंने ये तो पूछ लिया था आपसे कि कोई रेगुलर जगह जहाँ अब भी आप जाते हो, लेकिन वो जगह जो छूट गई हैं जहाँ आपका एक टाइम तक रेगुलरली जाना होता था। 8657661071 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना मैसेज भेजिएगा। पंकज मोहोर जी लिखते हैं कि मैं रेगुलरली हमारे एक किराने माल की जो शॉप है वहीं से सारा हमारा घर का किराना जो है वो चीज़ें खरीदता हूँ, तो उनसे बड़ी अच्छी पहचान हो गई है, एक रिश्ता सा जो है बिल्कुल बन गया है, फैमिली जैसे बन गए हैं वो हमारी। क्या बात है, यही यही चीज़ें मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझ तक पहुँचाएं कि ये जो ह्यूमन कनेक्शन है ना, वो सारा कुछ ऑनलाइन होने की वजह से इतना आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो इसीलिए लव यू जिंदगी में आज मैंने ये टॉपिक लिया। हम हमारे गानों की तरफ दोबारा लौटेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से, एक नहीं दो कमर्शियल स्पॉट्स आएंगे, उसके बाद गाना, उसके बाद हम लौट आएंगे। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 एफएम रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो।
2: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
3: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
4: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

गोरी तेरे प्यार में, इस फिल्म से सुना आपने ये गाना। सुखविंदर सिंह, सना मोई दत्ती मिलके गा रहे थे, अनविता दत्त ने इसको लिखा, विशालन शेखर की कॉम्पोजिशन थी। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप और लव यू जिंदगी में। आज हम बात कर रहे थे कि हमें जो जॉय मिलता है किसी जगह पर रेगुलर जाने से, है ना, कहीं किसी जगह के हम रेगुलर होते हैं, मतलब कि कोई पार्क में आपने किसी से फ्रेंडशिप कर ली, किसी कैफे किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हो और वहां का स्टाफ, या जैसे कि हमारे एक लिसनर ने बताया कि वो बैंक रेगुलरली जाते हैं तो वहां के स्टाफ से उनकी दोस्ती हो गई है। तो ये आज की शाम जो है बस इतनी सी खूबसूरत बात के कभी कभी छोटी छोटी फेमिलियर चीजें, फेमिलियर चेहरे जो हैं हमारी लाइफ को स्पेशल बना देते हैं। रोज जो है कहीं जाते हैं हम किसी दुकान, कुछ कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि स्पेशली शाम का जो उनका टाइम होता है वो किसी नुक्कड़ की शॉप के पास वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाते हैं, और फ्रेंड्स भी वो होते हैं, कोई स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स नहीं होते उनके, वही सारे लोग जो वहां पे उस शॉप के पास आके बैठते हैं, बतियाते हैं, बातें करते हैं। आज के इस दौर में भी अगर आपके पास कोई ऐसी फेवरेट जगह है, कोई ऐसे लोग हैं जो आप वहां जाकर विजिट करने पर आपको जो है ना मिलते हैं, तो आप बहुत ही खुशनसीब हैं, क्योंकि सारा कुछ, सारी चीजें जैसे कि मैंने कहा ऑनलाइन हो गई है। तो ऐसे जमाने में इस तरह के कुछ लोग रखना, इस तरह के कुछ लोगों से मिलना, बातें करना, रेगुलर किसी जगह का रेगुलर होना, ये अपने आप में जो है बहुत ही खुशी देने वाली बात है। जिंदगी को ऐसे ही तो छोटी छोटी चीजें, ऐसी ऐसी खुशियों से ही तो हम लव यू जिंदगी कहते हैं, है ना। आपके मैसेजेस मुझे मिले हैं और आगे भी हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन एक लव यू जिंदगी को यहीं रोकने का वक्त हो गया है। आपको बता दें 6:05 पर आप नागपुर सेंटर से मराठी में समाचार सुन पाएंगे, और 6:15 पर 6:15 जो है अंदाज़े बयां की महफिल बिल्कुल सजने वाली है, तो आइएगा जरूर उस महफिल में। अभी के लिए जैसे कि मैंने कहा, आज की हमारी सारी जो प्लेलिस्ट थी वो इसी फेस्टिवल मूड को बरकरार रखते हुए थी, तो जाते जाते एक और ऐसे ही गाना जो आपको डांस करने पर मजबूर करते। हैप्पी नव रात्रि आप सभी को, सोहेल सेन ने इसे कंपोज किया है, जावेद अख्तर साहब ने इसको लिखा है, सोहेल सेन बेला शेंडे मिलके गाएंगे इसे। व्हाट्स योर राशि से आ रहा है सूचे।

0: पीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: म्यूजिकली योर्स, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। शर्मीन संग शामिल हैं आप, और अंदाज़े बयां की महफिल सज गई है जिसमें हम सूफी गज़लें, कवालियां, सूफी सॉन्ग्स, एल्बम सॉन्ग्स, इस तरह का पूरा जो हमारी प्लेलिस्ट होती है, और उसमें से फर्स्ट तो आपने सुना ही है ना, गुलों में रंग भरे, हैदर फिल्म से था, अरिजीत सिंह गा रहे थे, और साथ ही साथ चलती है कुछ शेर व शायरी जो हम लेकर आते हैं, बहुत ही कुछ बेहतरीन शायर हजरात हैं उनके। तो हम शुरुआत करते हैं उमर नजमी के इस शेर से। वो लिखते हैं कि निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। कितनी गहरी बात है ना, कि इंसान को जब है ना किसी एक कैद की आदत हो जाती है तो उसको समझ में नहीं आता, उसको अपनी काबिलियत पर इतना यकीन नहीं रहता, बहुत सारे उसको अपने आप को लेकर डाउट्स होते हैं कि मैं उड़ पाऊंगा कि नहीं, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो कंफर्ट जोन में हो जाते हैं। आप किसी एक जगह की भी अगर बात कर लें, किसी एक सिचुएशन की बात कर लें, तो अगर आपको उस सिचुएशन की, उन लोगों की आदत हो जाती है ना, तो वो जो टॉक्सिसिटी है, वो जो कैद है, वो आपको नज़र नहीं आती। तो इसीलिए जो है इस सिचुएशन के लिए ही शायद उमर नजमी ने लिखा है कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। आए आपको सुनाते हैं अगला गाना, नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज है, और प्यार हो गया इस फिल्म से। जावेद अख्तर साहब ने सिर लिखा, उदित नारायण, अनुराधा पुडवाल भी साथ देंगे, कोई जाने कोई न जाने। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 एफएम रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

अंदाज बयां की महफिल की यही तो खासियत है, इसमें ऐसे ही सूफी और सॉन्ग्स प्ले होते हैं, कव्वालियां, गजलें, सूफी सॉन्ग्स, एल्बम सॉन्ग्स, ये सबका मिक्सचर है ये प्रोग्राम। और साथ में हम कुछ लेकर आते हैं शेर व शायरी, वो भी आपको सुनाते हैं। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। और जहां शेर व शायरी की बात है तो फातिमा महरू का एक शेर, नहीं एक्चुअली दो अशार हैं, वो आपको सुनाते हैं। वो लिखती हैं कि

भिजवाए कभी फूल तो खुद आता नहीं है, भिजवाए कभी फूल तो खुद आता नहीं है, खुद आए तो बढ़कर कोई तोहफा नहीं होता। हाय हाय हाय, खुद आए तो बढ़कर कोई तोहफा नहीं होता। और आगे कहती हैं कि होता है हजारों में कोई एक यहाँ यूं, होता है हजारों में कोई एक यहाँ यूं, होने से जहान जिसके अकेला नहीं होता। वहाँ कोई एक बस चाहिए होता है ऐसा शख्स जो मिल जाए, तो फिर ऐसे लगता है कि सारा जहान मिल गया है ना। और भी ऐसे शेर व शायरी, स्पेशली आज मैं एक पोयम लेकर आई हूँ पाश की। वो यूं तो पंजाबी में लिखते थे, लेकिन उनकी पोयम ख्वाब का ट्रांसलेशन हम आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी के लिए वक्त हुआ है एक गज़ल का, जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में। निदा फाजली साहब ने इसे लिखा, जतिन ललित की कॉम्पोजिशन, सरफरोश फिल्म से आ रही है गजल। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
2: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
3: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

बात है, शान की इतनी प्यारी आवाज में सुना अपने ये गाना। और रविंद्र जैन जी ने इसको क्या ही खूब लिखा और कंपोज किया था। एक विवाह ऐसा भी इस फिल्म से था ये गाना। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। अंदाज़े बयां की महफिल सजी हुई है जिसमें ऐसे ही गजलें, सूफी सॉन्ग्स, एल्बम सॉन्ग्स, कव्वालियां हम आप तक पहुंचाते हैं, आपको सुनाते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि आज मैंने पाश साहब की एक पोएम आपके लिए लेकर आई है जिसका नाम है ख्वाब, और उसका हम ट्रांसलेशन आपको सुनाएंगे बिकॉज वो अक्सर पंजाबी में ही मोस्टली लिखा करते थे। तो ये जो मैं आपको सुना रही हूँ पोएम, वो ट्रांसलेशन है ख्वाब। ये पोएम है पाश साहब की, तो आए सुनते हैं। ख्वाब हर शख्स को नहीं आते, ख्वाब हर शख्स को नहीं आते, बेजान बारूद के जर्रों में सोई हुई आग को ख्वाब नहीं आते, बुरे काम के लिए उठी हुई हथेली पर आए पसीने को, बुरे काम के लिए उठी हुई हथेली पर आए पसीने को ख्वाब नहीं आते, मल्लाहों से रूठ चुके समंदरों को ख्वाब नहीं आते, शेल्फों में पड़ी तारीख की किताबों को ख्वाब नहीं आते, ख्वाबों के लिए लाजिम है रोशन दिलों का होना, ख्वाबों के लिए नींद की नजर होना लाजिम है, ख्वाबों के लिए नींद की नजर होना लाजिम है, ख्वाब इसलिए हर शख्स को नहीं आते। आपको सुनाते हैं ताजमहल इस फिल्म से ही ये गजल हरिहरन साहब की आवाज में, नक्श लालपुरी एंड आयद गुल रेज ने इसे लिखा, नौशाद साहब की कॉम्पोजिशन है। अपने

बात है। आपको ये अगर गज़ल अच्छी लगी हो जुल्फ़ों के बारे में, तो आपको बता दें कि एक और गज़ल मैं आपके लिए जुल्फ़ों को लेकर ही नहीं, जुल्फ़ों को लेकर नहीं, नकाब को लेकर ला रही हूँ। आप बताइएगा मुझे जब तक हम ये लिंक पूरी करते हैं कि कौन सी गज़ल होगी। देखते हैं कितने लोगों को पता है। बहुत बहुत ही फेमस गज़ल सिंगर की आवाज़ में आएगी ये। मेरी लिंक ख़त्म होने से पहले पहले आपका जवाब देखने आता है क्या। और जैसे कि मैंने कहा कि वो नकाब पर होगी। और जहाँ शेर व शायरी की बात है, एक आखिरी शेर इस अंदाज़े बयां की महफिल से जाते जाते, दाग दहलवी साहब का ये शेर है। वो कहते हैं कि हाथ रखकर वो जो पूछे दिले बेताब का हाल, हाथ रखकर वो जो पूछे दिले बेताब का हाल, वो भी आराम हो भी आराम तो कह दूं मुझे आराम नहीं। हाय, हाथ रख कर जो पूछे दिले बेताब का हाल, हो भी आराम तो कह दूं कि मुझे आराम नहीं। ये मोहब्बत में जो शख्स रहता है उसके बाद इसी तरह की बातें वो कहता है। अंदाज़े बयां में हम ऐसे ही शायर हजरात के जो शेर व शायरी हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। और गाने होते हैं, गज़लें, कव्वालियां, सूफी सॉन्ग्स, एल्बम सॉन्ग्स। इस महफिल को यहीं रोकने का वक्त हो चला है। आपको बता दें 7 बजे आप मराठी समाचार सुन पाएंगे हमारे न्यूज़ स्टूडियो से। और 7:10 पर हम तुम, ये आपका चहीता प्रोग्राम जिसमें जो है आपकी पसंद के गाने प्ले होते हैं, लेकिन हम एक थीम के साथ चलते हैं। एक थीम आपके लिए लेकर आती हूँ मैं, और आप उस थीम के अकॉर्डिंग अपना जो भी फेवरेट गाना है वो हम आपके लिए प्ले करते हैं। अभी के लिए जिस गज़ल का आपसे वादा किया था वो सुनाते हैं। जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में आएगी ये। अमीर मिनाई ने इसे लिखा, जगजीत सिंह जी की कॉम्पोजिशन है जी। यही यही गज़ल।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: बिल्कुल म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। शर्मीन संग शामिल हैं आप। हम तुम इस प्रोग्राम में आपकी पसंद के गाने हम प्ले करते हैं। एक थीम लेकर आती हूँ मैं और उसके अराउंड जो है आपने अपनी फेवरेट जो भी आपका गाना है वो सेंड कर देना है 8657661071 पर। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आज की हमारी थीम क्या है गौर से सुनिएगा। ऐसी मूवीज के सॉन्ग्स आपने रिक्वेस्ट करने हैं जिन मूवीज का जो टाइटल है ना, जो नाम है ना, वो उस फिल्म के किसी कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है। उस फिल्म में कोई ऐसा कैरेक्टर था, उसका वो नाम था और फिल्म का भी वही नाम है। तो ऐसी फिल्म के गाने आपने जो है वो रिक्वेस्ट करने हैं। नंबर एक बार फिर से बता दूं, 8657661071 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो ये जो पहला गाना है उससे आप समझ जाएंगे। देखें, ये फिल्म का नाम भी था पीके और उसमें जो मेन कैरेक्टर था उसका भी नाम था पीके, है ना। तो इस तरह के गाने आपने रिक्वेस्ट करने हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि मेन कैरेक्टर ही हो, मतलब वो फिल्म का टाइटल ही जो नाम है उसमें वो फिल्म में कोई ना कोई ऐसा किरदार था। शान एंड श्रेया घोषाल की आवाजें हैं, स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा है, शांतनु मोइत्रा की कॉम्पोजिशन है। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

एक छोटी सी रिश्वत क्या सच में इतनी छोटी होती है? नहीं, रिश्वत सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं बल्कि ईमानदारी और व्यवस्था पर चोट है। याद रखिए, न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे। अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो चुप मत रहिए। संबंधित सतर्कता या भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी को इसकी सूचना दीजिए। सतर्क रहें, ईमानदार रहें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

गब्बर इज बैक। हाँ जी, और मैं भी वापस आ गई हूँ। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। हम तुम ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आज हमारी थीम है, मैंने आपसे मांगे हैं ऐसे गाने जो ऐसी फिल्मों से हैं जिन फिल्मों के नाम जो है उस फिल्म के किसी कैरेक्टर पर बेस्ड थे। जैसे कि इस फिल्म का नाम है गब्बर इज बैक, ठीक है। तो इसमें एक किरदार है, मेन जो कैरेक्टर है उसी का नाम गब्बर होता है, अक्षय कुमार प्ले कर रहे हैं उसे। अरिजीत सिंह, पलक मुछल ने इसको गाया है, मनोज यादव ने इसे लिखा था, और आपने ये गाना जो है वो सुना यश शिंदे की रिक्वेस्ट पर। तो आपको अब थीम क्लियर हो गई है ना, ऐसे गाने आपने रिक्वेस्ट करने हैं जिनके, ऐसी फिल्मों से वो गाने आपने रिक्वेस्ट करने हैं जिन फिल्मों के नाम उस फिल्म के किसी किरदार पर बेस्ड थे। दो गाने अब जो अगले मैं प्ले कर रही हूँ, एक तो

आएगा ये वाला, जिसकी रिक्वेस्ट हमें की है विक्रम पाष्टे ने। करण अर्जुन से हम प्ले करेंगे जाती हूं मैं, लेकिन उससे पहले आएगा पिंटो का गाना। अब वो सुल्तान फिल्म से सुनना चाह रहे हैं, बेबी को बेस पसंद है। विशाल ददलानी, शालमली खोलगड़े, इशिता एंड बादशाह मिलके गाएंगे इसे। इरशाद कामिल ने इसे लिखा, विशाल एंड शिखर की कॉम्पोजिशन।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: एक छोटी सी रिश्वत क्या सच में इतनी छोटी होती है? नहीं, रिश्वत सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं बल्कि ईमानदारी और व्यवस्था पर चोट है। याद रखिए, न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे। अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो चुप मत रहिए। संबंधित सतर्कता या भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी को इसकी सूचना दीजिए। सतर्क रहें, ईमानदार रहें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

0: ACP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: करण अर्जुन इस फिल्म से सुना आपने ये गाना, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजें थी, इंदिवर ने इसे लिखा, राजेश रोशन की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप और हम तुम इस प्रोग्राम में। आज मैंने आपसे पूछा है कि आपकी सॉन्ग रिक्वेस्टें तो प्ले होंगी, लेकिन आपने ऐसी फिल्मों के गाने रिक्वेस्ट करने हैं जिन फिल्मों के नाम जो है उस फिल्म के किरदार पर बेस्ड थे। जैसे कि ये वाला गाना आपने सुना, वो था फिल्म करण अर्जुन से, विक्रम पाश्ते ने इस गाने की रिक्वेस्ट की थी, तो उस फिल्म के किरदारों के जो नाम थे ना, वही उस फिल्म के टाइटल भी थे। तो इस तरह की फिल्मों के गाने आपने हमें भेजने थे। अगले दो गानों के बारे में आपको बता दूं बिना किसी देरी के। एक तो सॉन्ग हम प्ले करेंगे रवि शालकर जी की रिक्वेस्ट पर आएगा, वीर जारा से क्यों हवा, लता दीदी, सोनू निगम एंड यश जी की आवाजें इसमें, जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा, मदन मोहन जी की कॉम्पोजिशन है। और उसके बाद जो गाना प्ले करने वाली हूं मैं, वो सीता और गीता से है, जिसकी काफी रिक्वेस्टें आई हैं। मीना जी, फिरोजी गनपुरिया जी, मयूर गोहड़ ने भी इस गाने की रिक्वेस्ट की है, और उन सभी के लिए वो हम प्ले करेंगे जिनके गाने इस रिक्वेस्ट आर में पूरे न हो पाए या उनकी रिक्वेस्टें पूरी न हो पाए, तो उन सबके लिए भी वो गाना आएगा। लेकिन अभी के लिए आपको सुनाते हैं रवि शालकर जी की रिक्वेस्ट पर क्यों हवा। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा, दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू, आधी सोई हुई आधी जागी हुई, आंखें मलते हुए देखती है, लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी, जैसे हर पल नई और फिर भी वही, हाँ वही जिंदगी।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों।
2: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
4: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
5: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

सीता और गीता से सुना आपने ये गाना, ओ साथी चल, और ओ साथी मेरे भी चलने का वक्त हो चला है। आशा जी किशोरदा की आवाज़ें, आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा, आडी बर्मन जी की कॉम्पोजिशन। ये गाना आपने सुना, मीना जी और मयूर गोहड़ और बाकी उन सभी लिसनर्स के लिए ये गाना डेडिकेटेड है जिनके गाने आज प्ले नहीं हो पाए। और जाते जाते दो गानों के बारे में भी आपको बता दूँ, अभी के लिए तो मैं प्ले कर रही हूँ मिस्टर इंडिया से आएगा ये गाना, जिंदगी की यही रीत है, किशोरदा की आवाज़ है, जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी की कॉम्पोजिशन है। अंकित और राकेश माथुर ने इस गाने की रिक्वेस्ट की थी। और लास्ट गाना इसके बाद जो मैं प्ले करूँगी वो है अजब प्रेम की गजब कहानी से, प्रेम की नैया, पंकज मोहर की रिक्वेस्ट पर आएगा ये गाना। और जैसे कि मैंने कहा, ये जो गाने हैं वो आप सभी के लिए जिनके आज गाने पूरे रिक्वेस्ट जो है वो पूरी नहीं कर पाई मैं। कल सुबह 11 से 2 के इस प्रोग्राम में दोबारा मैं आपसे मिलूंगी, सो ट्यून इन करना नहीं भूलिएगा। अब जा रही है शर्मीन, अपना ख्याल रखें सामयी।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। सेंसेक्स 2% से अधिक बढ़कर 74,316 पर बंद हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। कहा, देश वैश्विक खेल महाशक्ति

0: रूप में उभरने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को सीखने के अवसर और दूसरे शहरों में निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित यह उपग्रह भारतीय वायुसेना की सुरक्षित और निर्बाध संचार क्षमता मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4G और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2G और 3G तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर CNAP सेवा शुरू करने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी

0: किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों के लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। ये सुनवाई एसआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बीच हुई है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को अपनी याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से भी एसआईआर से कथित नाम हटाने पर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब 51 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में यह निर्यात 45 अरब 73 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
1: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन मजबूत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र को वरिष्ठ नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, नियामक मंजूरियों, आवेदनों के निपटारे और अन्य कामकाज की एकीकृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि गिव इट अप अभियान जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया जा रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गिव इट अप अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत लोगों से स्वेच्छा से एलपीजी गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। इस अभियान के तहत 1,13,00,000 से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी। इससे हुई बचत से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ, जो पहले खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करती थी। सरकार ने देश भर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अब तक 10,56,00,000 से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गिव इट अप अभियान ने लोगों को एकजुट होकर गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया।
3: वी इंट्रोड्यूस द गिव इट अप कैंपेन seeking the cooperation of the public in voluntarily giving up cooking gas subsidies. We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazards of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change इन द लेवल्स ऑफ करप्शन।
2: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने बताया कि गैस चूल्हे से खाना बनाना काफी आसान हो गया है और उन्हें अब खाना बनाते समय धुएं का सामना भी नहीं करना पड़ता।
4: पहले जब चूल्हे पे खाना बनाया करती थी मैं, तो मेरे धुएं से चेहरे पे एलर्जी हो जाती थी। अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा।

0: गिव इट अप अभियान ने लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है, साथ ही हर परिवार तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती दी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
2: हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम, आपने तो गोल्ड लाकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है और जहां पंच वहां परमेश्वर। शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, 1982 के बाद मैराथन में भारत को मिली सफलता, ये वाकई बहुत सुखद है।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक उछलकर 74,316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक की तेजी के साथ 22,997 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 पर बंद हुआ।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और निचले तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है।
4: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा हुई है। रोहतांग दर्रे से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक अब यातायात सुबह 6 बजे से साय 5 बजे तक ही चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रे पर जाने से पहले ताज़ा आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi unveils development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh, says Union Territories development remains a key priority for centre. Supreme Court issues notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and others on protest march to apex court if alleged SIR irregularities. Also seeks poll panel's reply if alleged voter deletions. Defence Ministry signs contracts worth over 4,000 crore rupees for GSAT-7C communication satellite for Indian Air Force and Varunastra heavyweight torpedoes for Indian Navy. Government mandates caller name display for telecom users from 1st of next month. Sensex climbs over 2% to close at 74,316. And Prime Minister Modi interacts with India's Asian Games contingent in New Delhi, says country is poised to emerge as a global sporting powerhouse.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है, उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम

हटाने जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR करने का निर्देश दिया है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में कल प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू की हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित प्रेस वार्ता में DCP नेहा यादव ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की कि वे ऐसे किसी भी भीड़ में शामिल न हो जो धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क अगले 2 दिनों तक बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रंग में सुन रहे हैं आप नाज के साथ। ये शहर ये गलियां जब जब भी मेरे सामने आए किसी नए इश्क की तरह तुम बड़ी शिद्दत से याद आए। अगली गजल आप तक पहुंचा रहे हैं जगजीत जी की आवाज में।

कभी कभी कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं, नजरों से बनते हैं। एक नजर में अपनापन, एक मुस्कान में सैकड़ों बातें, और एक मुलाकात में पूरी कहानी छुपी होती है। रंगी महफिल सुन रहे हैं आप, अगली गजल आप तक पहुंचा रही हूं जगजीत जी की आवाज में। बने रहिए हमारे साथ।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
5: कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब चारों ओर भीड़ होती है पर दिल किसी एक शख्स की कमी महसूस करता है। तब लगता है कि दुनिया की सारी रौनकें फीकी है, क्योंकि सुकून तो बस एक उसी शख्स के साथ है। अगली गजल आप तक पहुंचा रही हूँ चंदन दास की आवाज में। बने रहिए हमारे साथ, आप सुन रहे हैं रंगे महफिल।

0: गाय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

कहीं फिसल ना जाऊं तेरे ख्यालों में चलते चलते, अपनी यादों को रोको। मेरे शहर में बारिश हो रही है। ये बारिश का रंग जो होता है ना, इसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन ये सारी कायनात को रंगीन बना देता है। छोड़ जा रही हूँ आपको आखिरी गजल के साथ। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शब्बा खैर। मिलते हैं किसी खूबसूरत मोड़ पर दोबारा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की, कहा देश वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हिंदू धर्म से इस्लाम या गैर हिंदू धर्म में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की। दिल्ली पुलिस ने कल कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता की धारा 163 लागू की। शीर्ष न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फिल्म महोत्सव इफ्फी 2026 के लिए मीडिया पंजीकरण की समय सीमा 2 दिन बढ़ाई गई। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC ने रेल यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उत्तर रेलवे ने आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर विशेष आरक्षित त्योहार रेलगाड़ियां चलाने और मौजूदा फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा और भारतीय महिला क्रिकेट टीम कल रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगी। समाचार समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम रेनबो और आइए सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो।

0: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है।
0: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों

0: होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की।
1: मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है।
0: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार, और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती। सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

इसी गीत के साथ इस कार्यक्रम को दीजिए अनुमति। अगले सेगमेंट में फिर से मुलाकात होगी थोड़ी ही देर बाद, तब तक बने रहिए हमारे साथ एफएम रेनबो पर। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 1 बजे हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से भी बातचीत की, कहा देश वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू धर्म से इस्लाम या गैर हिंदू धर्म में धर्मांतर करने वाले व्यक्ति को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई। दिल्ली पुलिस ने कल कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की। शीर्ष न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC ने रेल यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उत्तर रेलवे ने आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर विशेष आरक्षित त्योहार रेलगाड़ियां चलाने और मौजूदा फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा और भारतीय महिला क्रिकेट टीम कल रायपुर में जिम्बाब्वे के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगी। मुख्य समाचार अब समाप्त होते हैं।

आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6 MHz पर। दोस्तों, मैं हूं आपकी साथी दुर्गेश और आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
3: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार, मन की बात में आप सबका स्वागत है।
2: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति।

0: के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला, बात देश की सबके मन की।
1: मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है।
0: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार, और देश कहे चलो सुने मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

दोस्तों, सुहानी रात का ये सफर अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6 MHz पर।

तो सो रात के 2 बजे हैं, ये सुनते हैं समाचार। प्रधानमंत्री ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टारपीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की। दिल्ली पुलिस ने आज कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की। शीर्ष न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कर्नाटक और केरलम के दौरे पर रहेंगे। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता रीमा नानावटी को शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए हिलेरी रोडम क्लिंटन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। उत्तर रेलवे ने आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर विशेष आरक्षित त्योहार रेलगाड़ियां चलाने और मौजूदा फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लॉस वेगास में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगी। और मौसम विभाग ने आज दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम रेनबो, अपनी रेडियो होस्ट दुर्गेश के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए सुनते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बिसरे। भुलाए ना बनी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुछ प्यारे प्यारे नगमे और बने रहिए मेरे साथ।
1: मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कर।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार, मन की बात में आप सबका स्वागत है।
0: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की।
1: मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है।
0: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

नमस्कार, लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉरपीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की। दिल्ली पुलिस ने आज कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की। शेष

न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कर्नाटक और केरलम के दौरे पर रहेंगे। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता रीमान नानावटी को शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए हिलेरी रोडम क्लिंटन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। उत्तर रेलवे ने आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर विशेष आरक्षित त्योहार रेलगाड़ियां चलाने और मौजूदा फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगी। और मौसम विभाग ने आज दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:23। और श्रोताओ लीजिए, अब समय है आपके कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कुछ प्यारे से खूबसूरत से गीत आपके लिए लेकर आए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो एंजॉय कीजिए नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक मेरे यानी अलमास रजा के साथ।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। मन की परतें खोल जरा बिंदास बोल आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
4: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 23 अक्टूबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 25 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉरपीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की। दिल्ली पुलिस ने आज कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की। शीर्ष न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कर्नाटक और केरलम के दौरे पर रहेंगे। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता रीमा नानावटी को शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए हिलेरी रोडम क्लिंटन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। उत्तर रेलवे ने आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर विशेष आरक्षित त्योहार रेलगाड़ियां

बढ़ाने और मौजूदा फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगी। और मौसम विभाग ने आज दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और काराईकाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, हमारे श्रोता फिर जुड़ गए एक बार एफएम रेनबो के माध्यम से हम तक। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। समय हो रहा है सुबह के 4:03 और लीजिए अब लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम सारे गामा। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे

0: रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्रोता, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सारेगामा अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।